उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है, और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं। देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज भी जो हैं ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आपको शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई, और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवत गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया, तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: इस गाड़ी में जितना सुख दिया
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: अच्छा हमने भी दिया है, जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी दे के जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी
0: जाता है। देकर
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवल्स करना पड़ता।
0: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है, जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
0: आनंद कहते हैं।
1: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में?
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवत गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इस ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन
0: चाहिए था,
1: और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ परंतु वे दूर नहीं हो पाते। प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास
0: कर रहे हैं, या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो देखिए जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी।
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद
0: जी
1: वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का।
0: जी।
1: तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे, परंतु शिला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? शिला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
0: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है, कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य यह है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा?
0: हाँ।
1: तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुँचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें, इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में, लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
1: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए। कितना आसान हो गया ना,
0: जो मन करे, जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
1: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में 3 चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, लेकिन 2 चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
0: जी,
1: या फिर यू नो भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं
0: फंस जाएगा। और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है जो अब मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है, जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को। मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना,
0: हाँ,
1: सुबह वॉक पे जाना,
0: हाँ,
1: सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना,
0: हाँ,
1: केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना, तो कहने का तात्पर्य अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा,
0: करने लगेगा।
1: तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
0: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है,
1: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है।
0: हाँ।
1: जैसे कि जब टंकी में,
0: हाँ,
1: पानी गंदा होता है,
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी टैंकर साफ करने तो नहीं जाते,
0: नहीं जाते,
1: हम क्या करते हैं,
0: फिल्टर लगा देते हैं।
1: हाँ। हाँ, फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर
0: हाँ,
1: से साफ पानी चालू करते हैं,
0: हाँ,
1: और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता
0: खुला
1: छोड़ देते हैं।
0: हाँ।
1: जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ
0: हो जाता है।
1: कहने का तात्पर्य, अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखी विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे,
0: बाहर होते
1: जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते।
0: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं, और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से,
0: हाँ,
1: मन को या दिल को,
0: हाँ,
1: जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है,
0: हाँ,
1: उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है, यू
0: हाँ,
1: नो you know, आप देखिए बॉलीवुड में भी,
0: हाँ,
1: या हॉलीवुड में भी,
0: हाँ,
1: लव जो होता है, प्रेम होता है, वो वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है,
0: एक तरफा है।
1: कहने का तात्पर्य है,
0: हाँ,
1: कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम,
0: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है, क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
1: यस, वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही, प्रेम ही जो है पूर्ण है,
0: हाँ,
1: जब दो तरफा से हो जाता है उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है। मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
0: ये बिजनेस हो गया।
1: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
0: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
1: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
0: जी।
1: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
0: जी।
1: यथा तथा वा विदधा तुलं पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट इज द चैतन्य महाप्रभु सेज,
0: हाँ,
1: महाप्रभु सेज कि देखिए,
0: हाँ,
1: भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ,
0: हाँ,
1: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
0: समर्पण,
1: आप कुछ भी करिए मेरे
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: कितने
0: जी
1: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: जब हम ऐसा कह देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
0: यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
1: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है, और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
0: जी,
1: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है।
0: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
1: यस, और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ।
0: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है, अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
1: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है।
0: जी,
1: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा, माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
0: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
1: ममता, ममता में प्रेम है।
0: जी जी,
1: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है,
0: जी जी,
1: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है।
0: जी जी,
1: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
0: निकल
1: जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर। वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है। ये माँ का प्रेम
0: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
1: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में। अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
0: निकल के सोच पाता है,
1: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है।
0: जी,
1: जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है।
0: जी,
1: भगवान
0: जी,
1: का अंश है ये आत्मा।
0: हुँ,
1: तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का,
0: प्रेम का रिश्ता।
1: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
0: साथ में रहेगी। बिल्कुल,
1: हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
0: जी जी, और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
1: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था,
0: घर था।
1: अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
0: जी
1: भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
0: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूंगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खासतौर पर वो बहुत जूझ रहा है समस्या से, और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
1: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
0: हो जाती है,
1: हमारे अंदर
0: अंदर होती है।
1: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
0: बिल्कुल।
1: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आपने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
0: जी,
1: अब 10 12 13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
0: जी,
1: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
0: जी। हाँ, और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
1: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्होंने कहा हम भी कीर्तन करना चाहें। सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया।
0: जी जी।
1: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप तो प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए, आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवद्गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसी आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। ये हम
0: सो अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
1: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी,
1: यही भक्ति योग।
0: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
1: जी।
0: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
1: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
0: जी
1: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना लें या मन को गुरु बना लें। मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए।
0: तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
1: यस, भगवत गीता 4th चैप्टर में भगवान इसको कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से। फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
1: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: हंसते मुस्कुराते चेहरे वाकई दिल के करीब हो तो मुझे लगता है कि आपके दिन बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और ऐसी शख्सियत, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल आदा, मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं मेरे खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसका इशारा यूं है कि मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है रूही हक। आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं लॉस एंजलिस से और आर्मी बैकग्राउंड से आप आते हैं। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यही एक वजह है कि वो खूबसूरत झलकती है इनके काम के माध्यम से। साथ ही साथ एक NGO भी आप रन करती हैं, होप बी लिट, आप उसके फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती हैं और आप एक फिल्म मेकर हैं, अच्छी लेखिका हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूही हक जी।
3: आपका बहुत आभार।
2: कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत अच्छा, यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। शाम में कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? ठीक है ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये जो हंसने की जो अदा है, हंसते मुस्कुराते आप लोगों को कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं, मुझे लगता है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर आप मुस्कान ला पाते होंगे अपने काम के माध्यम से। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप एक NGO रन करती हैं, तो प्लीज बताइए अपने बारे में, उस NGO के बारे में।
3: डेफिनेटली, होप बी लिट जो मेरा NGO है, जिसका मतलब है कि उम्मीद हमेशा कायम रहे सब में, वो एक ग्लोबल NGO है, लॉस एंजलिस बेस्ड है, लेकिन हमारा काम एक्चुअली हर कॉन्टिनेंट में हो चुका है। हम लोग अफ्रीका जा चुके हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑब्वियसली हम वहाँ बेस्ड हैं, और इंडिया में भी हमारे बहुत काम चलते हैं। और अभी हमारा रुख मेंटल हेल्थ की ओर जुड़ा है, बिकॉज सोशल मीडिया, जैसे कि आप जानते हैं, कि एपिडेमिक बनता जा रहा है अमंग्स द यूथ। तो हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ वेलनेस पे फोकस किया जाए। तो अभी हमारा जो नया विंग है वो उस पर काफी फोकस्ड है।
2: क्या बात है, बातों बातों में लिसनर्स एक इशारा हो चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बहुत सारी बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी का हम जिक्र करते हैं यानी कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें हम कर रहे होते हैं, और इसी संबंध में बात करने के लिए आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है आप हैं रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और आप ग्रेटर नोएडा में है। और इस वक्त बहुत सारी बातें, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी, इनका जो एक एनजीओ है वो रन करती हैं होप बी लिट, जो कि एक सामाजिक सरोकार रखता है। और इस संबंध में जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑफेयर कि ये लोगों के बीच में जाती हैं, उनके हक की बातें होती हैं, कहीं अंधेरा आए तो उसकी ज़िंदगी में उजाला लगाने का काम करती हैं, उजाला लाने का काम करती हैं। तो जो एक विषय था, जो एक टॉपिक था, इशारा था कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूही जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब आपको लगा कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मुझे बात करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए? आपने ये भी मुझे बताया था कि इसके बारे में आपने एक कोर्स किया है और सीखने समझने के लिए आप बाहर भी गए। कितना समय आपको उस कोर्स में लगा और क्या आप महसूस करती हैं कि किस वजह से लोगों का स्वास्थ्य डिस्टर्ब है मेंटल हेल्थ के लिए?
1: तो हमारे मेरा जो नॉन प्रॉफिट है उसमें 3-4 विंग्स हैं, और एक ओरल हेल्थ हमारा एक फोकस रहा है जिसमें कोलगेट, हेनरी शाइन जैसे बहुत बड़ी कंपनीज जुड़े हैं। मैंने देखा था कि ओरल हेल्थ में ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ बताया जाता है क्या बीमारी है। तो वो हमारी शुरुआत थी, और हम लोग लॉस एंजलिस स्कूल्स में ह्यूमन वैल्यूज़ विद एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे। अब इस सब के दौरान जब हम मेंटल होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, हमने देखा कि कैंप्स में हम बाकी सर्विसेज फिजिकल फोकस दे रहे थे

0: और मेंटल एपिडेमिक बहुत ही ऑब्वियस वे में, जो कि अभी आप देख रहे हैं दुनिया के हालात हैं, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है. और एक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्ट होंगे कि जब आदमी स्क्रोल करता है तो उसकी जो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस हैं वो कितने सेंसरी चेंजेस उसमें होते हैं, ये जब आप रिसर्च करेंगे तो यू विल बी रियली शॉक्ड. और वो सब मैं उसमें घुसी क्योंकि मैं जब काम कर रही थी गाँव में या शहर में बच्चों के साथ, यूथ के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैं देख रही थी कि मेंटल हेल्थ जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो एज एन एपिडेमिक बढ़ता ही जा रहा है. बिकॉज फिजिकली तुम टच करके निकल सकते हो, लेकिन मेंटली बहुत चीजें फिजिकली आपको अल्टीमेटली यू नो इफेक्ट करती हैं. तो जड़ से उस चीज को उखाड़ने के लिए दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए. और सोशल मीडिया आजकल जो कि एक यू नो बून है हैज आल्सो बिकम अ कर्स. इट्स अ वेरी थिन लाइन. तो वो थिन लाइन पे मुझे फिर जब फोकस हुआ तो मैंने कहा फिर मेंटल हेल्थ, ब्रेथ वर्क, जैसे हमारे प्राणायाम है. मैं योगा टीचर रह चुकी, मैंने ऋषिकेश में किया हुआ है. लेकिन वो क्या होता है कि इंडिया में हम बहुत वास्ट, अब कौन सा बच्चा इतना लंबा प्राणायाम का कोर्स करेगा. बट एक सोमैटिक ब्रेथ वर्क, मैंने रेफ्यूजी कैंप्स में काम किया है, तो जैसे बॉम्ब के बाद पैनिक होता है उसमें कितने सिंपल ब्रेथ टूल्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, लोगों की जनरेशनल ट्रॉमा कैसे आती है. तो ये सब बेसिक चीजें जो कि 3-4 मिनट में आप एक दो चीजें छोड़ के जा सकते हो, मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आया और मैं उसमें फिर मैंने 3-4 कोर्सेस किए.
1: सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिक्र हुआ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, और बात हुई योग के बारे में. सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो दिक्कतें परेशानियां आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं. और जब योग का जिक्र हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए और देखिएगा कि जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो जाएगी. आप चाहते हैं कि आप रुपया कमाएं, आप ये भूल जाते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में कि आपकी सेहत आपसे दूर जा रही है, कोसों दूर जा रही है. और वही रुपया आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च होता है जब आप बीमार होते हैं. और ऐसे ही आप मानसिक बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं. इसी संबंध में बात करने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं, रूही हक जी. बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सो कहीं जाएगा मैं सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरे साथ जुड़ रही है रूही हक जी, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और कश्मीर से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ आर्मी बैकग्राउंड से भी आप आते हैं और खुद का एक एनजीओ है जिसका नाम है होप बी लिट। आप उसकी फाउंडर हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, बच्चों के बीच में आप जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो एक बार फिर से रूही जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दुख को आप पहचानती हैं, उनके दुख को दूर करने का काम करती हैं? मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में रोशनी लाने का काम करती हैं और सच में आप रोशनी ला रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आप लोगों के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ अंधेरा है, वहाँ लाइट्स नहीं है, आप लाइट्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि आप नो डाउट कि आप लोगों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं जब आप लोगों से मिलती हैं धरातल पर ऑन ग्राउंड?
1: तो एक चीज मैंने देखी है कि क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे तो हम हर दो साल में नए शहर जाते थे, तो वो अडेप्टेबिलिटी बहुत आनी पड़ती है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। हर दो साल आप नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों की कल्चर और उनके अलग दुख और उनके अलग सुख वो सब देखना पड़ता है। तो इसी के साथ में बड़ी हुई और फिर कहीं भी जाना, किसी भी देश में जाना, बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि सभी अपने हैं। यही सिखाया जाता है फौज में कि हम सभी एक देश के हैं और सभी अपने हैं। बट ये मैंने नोटिस किया कि हम लोग जब से रोड में भी चलते हैं या कहीं पे भी होते हैं, अगर हम अपने कम्युनिटी में ही देखें तो हमें बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे जो कि काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक वही मैंने इग्नोर नहीं की और इसलिए मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जैसे मैं कनॉट प्लेस में थी और वहाँ मैंने ये जगह देखी जो कि एक इतनी लिट अप एरिया के बीच में है और इतने अमीर एरिया के बीच में, और वहाँ पे सवेरे जाने के लिए आपको अपने फोन के टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। और जब आदमी का दिमाग एक इतने उजाले से, वो भी यू नो मई की धूप में दिल्ली में एक अंधेरे गली में जाता है 12 बजे दोपहर को, वो भी एक जारिंग मेंटल एस्पेक्ट होता है। तो वो मैं इतनी बार गई वहाँ कैंप करने, मैंने वहाँ ओरल कैंप किया, हेल्थ कैंप किया, लेकिन ये लाइट मुझे हमेशा खटकती रही और मैं उनसे पूछती रही कि आपको क्यों नहीं खटक रही है। तो लोगों ने कहा कि हाँ आदत हो गई है, लेकिन ऐसी आदतें क्यों हम डालें। तो मैं सोच रही थी पहले कि गवर्नमेंट से बात करूं, क्या करूं, लेकिन फिर मेरे को सोलर लाइट का आया, बिकॉज सस्टेनेबल एनर्जी वैसे भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इसमें किसी को बिल नहीं आता है और धूप यहाँ बाकायदा रहती है। तो मैंने बहुत सारे पैनल्स और ये सब में हमने ट्रायल किए, क्योंकि मैं खुद, मेरे को केबलिंग वगैरह का बहुत शौक है और इस कॉलोनी में इतने केबल्स हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा कि रूफ से वो केबल नीचे कैसे आएगा और किस लाइट से जुड़ेगा और उसकी कैपेसिटी किस कितनी मेगाहर्ट्ज की रहेगी। तो एज अ प्रोजेक्ट मैंने उसको उठाया और आज की डेट में हमने काफी स्ट्रीट्स को लाइट दे दी है। और मतलब मैं जब उन गलियों में जाती हूँ तो लोग आके बोलते हैं कि दीदी हम गिर जाते थे और आज हम खेल पाते हैं यहाँ पे, और अब मुझे सिक्योरिटी लग रही है और अब मैं कैमरा लगाने की सोच रही हूँ विद व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यही है कि आदमी अगर चाहे तो बहुत आसानी से अपने दोस्तों के बीच में ही कर सकता है, और मैंने अपने दोस्तों के साथ ही शुरू किया। मैंने इंतजार नहीं किया कि कोई बड़ी एनजीओ आएगी और कुछ काम करेगी, और ये हर इंसान कर सकता है, बस अपने दिल और दिमाग को खुला रख के देखे तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी।
0: बहुत खूबसूरत एक शेर है, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और कहते भी हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। मैं समझता हूँ कि ये जो पहल होती है वही एक टफ समय होता है, जहाँ एक शुरुआत हो जाती है तो निश्चित तौर पर 10 लोग आप महसूस करते होंगे कि 10 लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वही कश्मकश में अगर इंसान रुक जाए, थम जाए, बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि उसका जो सपना है वो सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अरुई जी, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि जब आप इन लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां इनके सामने और आती हैं, चूंकि मेंटल हेल्थ का जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कोई एक ऐसा गाना जब आप बहुत परेशान रहती हैं, दिल को सुकून चाहती हैं, म्यूजिक के आसपास आप रहती हैं क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, तो एक गाना जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ वही गाना हम आपके लिए, अपने लिसनर्स के लिए प्ले करेंगे।
1: मुझे तो बहुत पुराने गाने पसंद है,
0: चलेगा,
1: तो बड़ा वो है ना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, वो मेरा बहुत फेवरेट।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो चलिए दोस्तों, ये गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। आप एनजीओ रन करती हैं, आप उसकी कर्ता धर्ता हैं, यू कहें अंग्रेजी में तो फाउंडर हैं। एनजीओ का नाम है होप बी लिट और आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यानी कि एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लॉस एंजेलिस बेस्ड आपकी कंपनी है और कश्मीर से आप ताल्लुक रखती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और वही जो खूबसूरती है वो आपके अंदर व्यक्तित्व में झलकती है कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, उस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना। आप है रूही हक जी, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। क्या महसूस करती हैं जब आप धरातल पर जाती हैं, ऑन ग्राउंड जाती हैं, कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो मानसिक अस्वस्थ हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो चाहे रुपयों की बात हो, चाहे वो एक लाइट का एग्जांपल हो जैसे आपने हमें खुद बताया, इसके अलावा पढ़ाई की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, घरेलू हिंसा है, तो किस तरीके से उनको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं?
1: मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थेरेप्यूटिक टूल्स किए हुए हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा आई थिंक ईजी होते हैं टू मैनेज, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है आज की डेट में। तो वो टूल्स सिंपल एक राय होता है, जैसे मैं से अफगानिस्तानी वुमेन, या फिर अभी रेफ्यूजी कैंप्स में हम लोग जॉर्डन में थे मिडल ईस्ट में, तो वहाँ की औरतों के साथ अगर वो एक रॉर होता है, ये सिंपल टूल्स होते हैं जो कि मतलब पीपल यू नो पीपल कैन गूगल, इससे इतनी यू फील सो इंडिपेंडेंट बिकॉज यू जस्ट स्पेंड टू मिनट्स डूइंग दैट लिटिल थिंग। तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और गूगल करके लोगों को मिल सकते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो जब हम लोग खुद ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे खुद का मानसिक स्वास्थ्य, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग, किसी का दुख देखना इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसको वो दुख हो रहा है, उसको वो तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ देख रहे हैं। तो दोनों जगह ये चीजें कायम रहती है कि आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य पहले तो ठीक रखना पड़ता है, यू हैव टू रिमेन स्ट्रांग। जैसे मैंने रेप के ऊपर जब मूवी बनाई थी लोगों ने कहा आपका रेप हुआ क्या, जब मैंने कैंसर के ऊपर बनाई तो बोला आपको कैंसर था क्या, तो वो ये ना कि तुमको नहीं होता है फिर भी वो फीलिंग
0: करना पड़ता है,
1: फील करना और करना चाहिए। हम इंसानियत तो वही है,
0: तभी काम कर पाएंगे,
1: तभी काम कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या लेवल है उसके पेन का, एंड यू कैन नेवर बी इन देयर शूज, उनका जो उनके साथ चल रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मेंटली अनस्टेबल है और बहुत ऑब्वियस चीज है, आजकल सटली सबके मानसिक में एंग्जाइटी और सोशल नर्वसनेस, आप देखिए कि इंटरनेट नहीं होने से क्या पागलपन होता है किसी घर में, जबकि खाना नहीं मिलने से वो पागलपन मैंने नहीं देखा है।
0: सही कह रहे हैं।
1: तो ये जो चीजें हो रही हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आज का जो जेंजी और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, बिकॉज जो एडल्ट हैं वो उसको इतनी खुद वो व्हाट्सएप की दुनिया में खोए हुए हैं।
0: मैं इसी बात पर आ रहा था, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, इवन हम बड़े हैं, हम अपने आप को छोड़ते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इतने आदी हो चुके हैं, अगर बच्चा हमारा रो रहा है हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो चुप हो जाता है और ये जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, आप और हम बैठे हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे जरा सा भी गैप मिल रहा है मैं सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बॉस का कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं से कोई कॉल तो नहीं आया, कहीं से कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, ये जो सोशल मीडिया का हम से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा कर रखें ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहे।
1: ये बहुत ही थिन लाइन है, बिकॉज हम खुद उन बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए भी वहीं जाओ जहाँ पे इनको बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, और इसलिए साइबर ट्रोलिंग, राइट, बिकॉज आपको इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए क्या कहा मेरे पोस्ट पर, ये कब रेलिवेंट हो गया इतना ज्यादा, ये कितनी जल्दी इतने सालों में पार हो गया हमें पता भी नहीं चला, करेक्ट। और वो व्यूज सही भी हैं, गलत भी हैं, आजकल तो फेक भी हैं, और ट्रोलिंग फेक है, और अब AI आ गया है, तो AI बेस्ड हमने देखा है अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, बिकॉज AI कैन डू एनीथिंग, इट कैन पुट यू वेयर यू वर नेवर देयर, और वो कितना डेंजरस है, इसलिए हम लोग इसमें जाना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन पुल दोज डाउन, जो चीज ऊपर जा सकती है इंटरनेट पे वो नीचे भी आ सकती है, ये वो एक्सटॉर्शन करने वाला भूल जाता है, लेकिन जो विक्टिम है वो ना भूले, वो एफर्ट है हमारी। अब
0: फाइनली अगर मैं इस रैप अप करूं इस प्रोग्राम को, फाइनली आपकी तरफ से अंत में क्या संदेश होगा, हमारे जो लिसनर्स हैं क्या कहना चाहती हैं और किन भविष्य की योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, तो बस आप अपनी बात रख सकते हैं।
1: डेफिनेटली हमारा इनफैक्ट होने वाला कुछ इवेंट्स हम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली ऑल्सो, और एक व्हाट नाउ फाउंडेशन करके है जो मुंबई बेस्ड है। डेफिनेटली प्लीज अपने यूथ को बोलिए कि दे लुक इट अप, एंड वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं और साइबर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई एक्सटॉर्ट हो रहा है तो वो चुप ना रहे, पेरेंट्स के साथ मिले, अपने शेयर करे, बिकॉज वो सबसे पहला डर होता है कि ये मैं नहीं थी लेकिन कौन कौन मेरा विश्वास करेगा, ये मैं नहीं था और कौन मेरा विश्वास करेगा. तो पहले वो उनके पास जाए, उनसे मिले, काउंसलिंग ले खुद की, और फिर यू नो पुलिस के पास जाएं, और ये चीजें हटाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं. टेक्निकल टूल्स आर एज पावरफुल फॉर द इविल एज दे आर फॉर द गुड.
0: सो हाउ टू कनेक्ट
1: व्हाट नाउ और होप बिलेट, दोनों के सोशल मीडिया पे जाएं, वहां पे कुछ नंबर्स भी लोकल दिए गए हैं जो कि वो कॉल कर सकते हैं एंड सपोर्ट विल स्टार्ट राइट देयर.
0: ठीक है, सोशल मीडिया का कोई लिंक अगर आप शेयर करना चाहें, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर हो जो आप बताना चाहें जिसके जरिए,
1: तो होप बिलेट दे कैन गो ऑन होप बिलेट एट HOPEBLIT एंड दे कैन ऑल्सो गो ऑन एट WHTNOW ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे. दे कैन रीच अस, मैसेज अस डायरेक्टली. मेरा खुद का अकाउंट है @RUHELZ जिसका नाम है रूहील्स.

0: कोशिश जारी है हीलिंग की, खुद की भी और लोगों की भी. तो वहां पे जुड़े और मैसेज करें और उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा.
1: हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं. आप यू ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं. वाकई बहुत नेक काम कर रहे हैं. मेरी दिली दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ.
0: थैंक यू सो मच. आप गगन है तो हम रूह हैं.
1: हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे. तो मेरे साथ लिसनर जुड़ी रही रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजेलिस बेस आपकी कंपनी है. और जैसे कि मैंने बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और होप बी लिट एनजीओ आप रन करती हैं. और बहुत अच्छा विषय जिस पर हमने बातें की, मेंटल हेल्थ के बारे में. ये विशेष कार्यक्रम, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. और कभी मुलाकात करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. हम दोनों को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9377 0। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
2: 90.8 FM। इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहाँ की अमर रह गई और वो है इनकी।
3: ये तो तुम जैसा।
4: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
3: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या जाने लाए हो?
4: क्या पता हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना? अरे अरे अनाया बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

एक बात बताओ, क्या हम सच्ची में सोलमेट्स हैं?

छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाएं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी हैं, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुना शारदा 90.8 FM। Sharda School of Media, Film and Entertainment, Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 88511-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ और जागरूक रख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से ही लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करने में हमारी सहायता करते हैं और आज का एपिसोड तो आप जानते ही हैं कि बहुत खास है।
2: श्रेयसी, बिल्कुल जानता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हमारे सहयोगी शशि कपूर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, जो एक मुहिम चला रही है टीबी हारेगा देश जीतेगा, उसमें हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमें सहयोग मिल रहा है एक जो संस्था है जिसका नाम है स्मार्ट। उसी के तहत हमने एक वादा किया है कि कुछ विशेष कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि आज हम यहाँ पर रेडियो पर चर्चा परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं और भी बहुत कुछ। बड़े बड़े अधिकारी भी हमसे जुड़ रहे हैं जो कि टीबी के विषय में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मैं तो आपका और आपके रेडियो का बहुत खूब ध्यान करता हूँ, क्योंकि आप कितने लोगों को सेहत के विषय में जानकार बना रहे हैं। गांव में निकल जाओ, किधर भी निकल जाओ, तो चहुं ओर यानी कि चारों दिशाओं में सुनो शारदा 90.8 FM की चर्चा होती है।
0: बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेहतिया सिंह जी। आप और भाभी हमारे साथ ना जुड़े तो भला हम कहां से इतनी जानकारी दे सकते हैं।
2: भाई भाभी का आपने जिक्र कर दिया है तो चलो खैर, ये अंदर की बात है भैया। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज हुई थी, इसलिए 24 मार्च को एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है।
1: तो ये इतनी पुरानी बीमारी है और हम इससे आज तक जूझ रहे हैं।
2: शेसी, आपने बहुत सही सवाल किया, यही तो दुखद बात है, लेकिन ये सच है। और आज भी हमारे देश में अनेकों प्रयासों के बाद भी लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, समय पर टेस्ट नहीं करवाते, समय से दवाई नहीं लेते और सावधानी तो बिल्कुल ही नहीं बरतते।
1: सही कहा आपने। हम भी तो लंबे समय से अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए टेस्ट और इलाज की जरूरत है। टीबी से डरने की या उसके लक्षण को छिपाने की जरूरत नहीं है।
0: सही कहा तुमने कि टीबी से घबराने की जरूरत तो है ही नहीं।
2: भाई शशि, इसका तो बहुत ही छोटा सा फंडा ये है कि जागरूक रहो और समय रहते बिना किसी बहानेबाजी या लापरवाही के टेस्ट करवाओ। हाँ, रही बात टेस्ट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शारदा अस्पताल का टीबी विभाग इसमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज आते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हमने लोगों को जागरूक भी किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अगर आप किसी भी संक्रामक व्यक्ति के टच में आए हो या आपको कोई भी टीबी का लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट जरूर करवाएं, और अगर पॉजिटिव हो तो अपने इलाज के लिए तैयार हमेशा रहें।
0: ये सब तो सही कह रहे हो आप सेहतिया सिंह जी, तो क्यों ना हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को टीबी से संबंधित कुछ जरूरी बातें बता दें।
2: क्या बात है, ये तो आपने हमारे मन की बात ही छीन ली, क्यों नहीं। सो दोस्तों, आपने टीबी या क्षय रोग या फिर तपेदिक के बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई है, जो ये एक संक्रामक और हवा से फैलने वाला रोग है, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हवा के माध्यम से पहुंचता है। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस बात को ध्यान रखे, अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हर रोज 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। सोचिए, उसमें से एक डॉक्टर हो सकता था, इंजीनियर हो सकता था, एक क्रिकेटर हो सकता था, और किसी की जान टीबी की वजह से चली जाए, जबकि हमारे पास इसका इलाज संभव है, तो ये सोचने की बात है। और करीब 28,000 लोग, श्रेयसी और शशि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के शिकार होते हैं।
1: तो सेहतिया भैया, इसके लक्षण क्या क्या है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: भाई श्रेयसी, आप बहुत समझदारी वाली बात कर रही हैं। अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। लक्षण की बात ये सामने आती है कि लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना। श्रोताओं ध्यान से सुनना, खांसी में खून आना, तेज बुखार और रात को पसीना आना, बिना किसी कारण अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना और शरीर में सुस्ती रहना, छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना।
0: बिल्कुल, कल ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई शोधों से ये साबित हुआ है कि लगभग हम सभी टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं, बल्कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति इस बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि टीबी का बैक्टीरिया कैसे और कब सक्रिय होता है। हम रोजाना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। टीबी का बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, यानी इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। हालांकि जब तक आप युवा और स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर इस बैक्टीरिया को नियंत्रित रखता है, उसे एक तरह से कैप्सूल में बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, टीबी सक्रिय हो जाता है और रोग फैलने लगता है।
1: मतलब है कि जब आप मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे।
2: भाई, आप दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो सेहतिया सिंह अच्छी बातों के साथ कुछ और अच्छी बातें कर ही लेता है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों। बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते हैं और टीबी के कीटाणु को नहीं फैला सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या स्टेरॉयड, या यदि आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका ये कैप्सूल कमजोर हो जाता है, बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं।
0: वाह सेहतिया जी, आप तो वाकई ज्ञानी भी हैं और इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इतनी सरल भाषा में समझा भी देते हैं। आपने सही कहा, यदि आप अस्वस्थ हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
1: और जब आप संक्रमित होते हैं, तब आपके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी लापरवाही ना करें और अपनी जांच तुरंत करवाएं।
2: सो लिसनर्स, कहने का मतलब यही है जो श्रेयसी और हमारे शशि भैया बातें आपको बता रहे हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। और हाँ, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जांच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए। और दवा की ये खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय का बड़ा महत्व है। देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेनी चाहिए। जब आप समय पर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा और एक महीने के अंदर कीटाणु कमजोर हो जाएंगे और आप किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएंगे।
1: लेकिन अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो एक से बढ़कर एक एंटीबायोटिक्स भी कीटाणुओं पर काम नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल श्रेयसी, लेकिन इस अवस्था को प्रतिरोधी टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इसका इलाज करना भी कठिन होता है।
2: ये तो आपको हमने पहले भी बता दिया है कि देश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 800-11-4x6 यानी कि 4 बार 6 पर कॉल करने में संकोच ना करें। एक बार पुनः बता देता हूं हिंदी में, 1800-11-6666 पर कॉल करने में बिल्कुल भी आप संकोच ना करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां पर है।
1: और सेहतिया भैया, मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिंदु व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर आपको टीबी बीमारी के लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका होता है।
0: बिल्कुल सियातिया जी, लेकिन मैं आपकी बात में कुछ बातें भी जोड़ना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा ही नहीं है कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद का इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं।
2: भाई शशि कपूर साहब, आपने बात अच्छी कही, मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो बात यही समझ में आती है कि यदि आप टीबी पॉजिटिव हैं लेकिन दवाई ले रहे हैं तो आपको आमतौर पर इस दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है।
0: तो सेहतिया जी, आप हमारे श्रोताओं को एहतियात के बारे में भी बताएं।
2: भाई आप कहें और हम ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे दे। खांसते छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक लें। खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वे भी अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी संक्रमित हों। ये सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या फिर थूक परीक्षण शामिल हो सकते हैं।
1: और कृपया लक्षणों को हल्के में ना लें, क्योंकि याद रखें कि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है, हालांकि मौत कम होती है और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए।
2: भाई श्रीसी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीधे सच्चे शब्दों में हमारे श्रोताओं को आपने समझा दिया। मैं यूँ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है, और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, लेकिन सेहतिया जी, इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2022 में कुल 20.77 लाख टीबी के मामले सामने आए और वर्ष 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई।
2: भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी शशि कपूर साहब, आपने जो पढ़ाई की है बहुत अच्छी की। जो मैंने सुना कि 20.77 लाख, बड़े अच्छी तरीके से आपने इसको उच्चारित किया। तो बात टीबी पर आते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आपको पता है कि सरकार टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जो टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड से लड़ाई लड़ने में अपनाया गया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: बिल्कुल सेहतिया जी, आपकी बातों से हमें ऐसा भरोसा प्रतीत हो रहा है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने में जरूर सफल होंगे। भागीदारी से तो कुछ भी संभव हो सकता है। याद है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया था और उसमें सफलता भी पाई थी, उसी प्रकार इस बार हम टीबी पर वार करने में सफल होंगे।
2: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि टीबी मुक्त भारत के लिए घर घर स्क्रीनिंग और मुफ्त सीबी नेट ट्रू नेट की जा रही है, यानी कि ये एक जांच का नाम है जिससे सुधार साफ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार निश्चय मित्रों के जरिए समुदाय की भागीदारी बढ़ा रही है, जहां व्यक्ति या संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें सही पोषण, दवाइयां और मानसिक समर्थन देते हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों टीबी से लड़ने के लिए दवा ही नहीं बल्कि सही पोषण की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता प्रदान की जाती है। यदि हमारे श्रोता चाहें तो वे भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और किसी भी टीबी रोगी को गोद ले सकते हैं और इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं।
2: भाई मैं इतना उतावला हो रहा था कि तुम्हारी बात रुके, लेकिन मैं ऐसा लगा मैं कह गया कुछ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था भाई शशि कपूर साहब, इस मुहिम में लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और देखिए हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अच्छे अच्छे काम की पोस्ट डालते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर भी आप आइए, इस सरकार की मुहिम से जुड़िए, लोगों की मदद करिए, उनको दोस्त बनाइए, और टीबी मरीज हम में से आप में से ही है, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कपूर साहब कि भारत को टीबी से निदान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी भी कमाल का साथ दे रही है। निश्चय पोर्टल का उपयोग रियल टाइम मरीज ट्रैकिंग, उपचार निगरानी और चिकित्सा उपचार के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों तक समय रहते बेहतर मदद पहुंचाई जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा सेहतिया जी आपने। तो दोस्तों याद रखिए, टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: तो सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ साझा की, और जरूर हमारे सुनने वाले लिसनर आपकी बातों का बखूबी ध्यान रखेंगे। तो चलते चलते अब शपथ भी ले लें।
2: जी बिल्कुल,
4: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीवी हारेगा देश जीतेगा।
0: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ।
5: मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर सुनो शारदा 90.8 FM पर एक खास कार्यक्रम चल रहा है, सेहत सही लाभ कई। इसका उद्देश्य यही है कि टीबी को हराना और देश को जिताना है। इसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सुनो शारदा की टीम को मरीजों से मिलवाया, उनके इंटरव्यू दिलवाए, निक से मित्र के बारे में बताया और समय समय पर FM के साथ मिलकर टीबी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और श्रोताओं तक पहुंचाया। देखिए, मेरा टीबी के मामले में फिर से यही संदेश है कि अगर टीबी को हम हराना चाहते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की फॉर दैट। तो मैं ये कहूँगा कि आप लक्षण हैं अगर आप, तो आप उसको छुपाएं नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में किसी को हैं, तो ये हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है, इसमें कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि उसको लेकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाएं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी अर्ली डायग्नोसिस मतलब शुरुआती, जब लक्षण कम हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं तो हम देखते हैं कि लीजन बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे में कई बार चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं स्पुटम वगैरह की जांच में, तो उसके लिए कुछ आधुनिक यू कैन की फैसिलिटीज़ जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, कोई छोटा सा लीजन है तो वहीं, जिसको दूरबीन वाली जांच भी बोलते हैं, वहीं से धुल के बलगम को निकालना और उसमें जांच कराना, या फिर कई बार फेफड़ों के बाहर में झिल्लियों में पानी भर जाता है तो उसमें थोरेकोस्कोपी अल्ट्रासाउंड से निकालना, उसकी जांच करना। तो एक तो ये सभी सुविधाएं जैसे ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, यहाँ तक कि डायग्नोसिस बनाना सिंपल टीबी की, एमडीआर टीबी की, और इन सभी का ट्रीटमेंट चाहे वो सिंपल टीबी हो या एमडीआर टीबी हो, शारदा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, निःशुल्क है उसकी जाँच भी, और किसी भी तरह की टीबी का इलाज भी, चाहे वो सिंपल टीबी है जिसको हम सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, या एमडीआर टीबी है या एक्सडीआर टीबी है, इन सभी का डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध है शारदा हॉस्पिटल के अंदर में। थैंक यू।
0: अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।

0: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मुझे प्लीज माफ कर दो.
1: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती.

0: तड़पता है दिल।
1: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: So what? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
1: You know, Shail, it really hurts. Anyway.

0: छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: इसीलिए तो कहता हूं,
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो।
0: बाकी

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के साथ हमको खेती में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी हम समय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल सकेंगे और अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। किसान मित्रों, जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश, आंधी, गर्मी और कीटों के प्रकोप से आपकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे खेती की जाए ताकि जलवायु परिवर्तन का असर हमारी खेती पर कम से कम हो। तो जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हमारे किसान भाई संरक्षित खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और ये संरक्षित खेती आजकल बहुत की जाती है और अनेक हमारे किसान भाई थोड़ी सी जमीन में बहुत सारा लाभ कमा रहे हैं। किसान मित्रों, संरक्षित खेती में फसलों को मौसम की मार, रोग और कीटों के साथ साथ खरपतवारों और पशुओं से संरक्षित करके खेती की जाती है। इसमें जो तकनीक अपनाई जाती है उसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, पुआल और सूखे खरपतवारों से मल्चिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संरक्षित खेती कृषि की एक आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत पौधों को प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों या यूं कहें प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज ठंड, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अत्यधिक बारिश, सूखा, इन सब से बचाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं जो फसल के विकास में मदद करती हैं और इस तरह से इस तकनीक से बेहतर गुणवत्ता और उच्च पैदावार प्राप्त की जा सकती है। किसान मित्रों, संरक्षित खेती में विभिन्न प्रकार की कृत्रिम संरचनाएं बनाई जाती हैं जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधों की वृद्धि के अनुकूल सभी परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। और किसान मित्रों, अब बात करेंगे संरक्षित खेती के लाभ के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और रविंद्र खालोर। किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये रागनी सुनील चौहान और रविंदर खालौर से। किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, आधुनिक तकनीक से फसलों की संरक्षित खेती करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नवीनतम तकनीक से सुसज्जित नियंत्रित वातावरण में फसलों की खेती की जाती है। प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। संरक्षित खेती के तहत फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो हमारे किसान भाई तो यही चाहते हैं कि लागत कम हो और किसी भी मौसम में उनको अच्छा उत्पादन मिले। एक और महत्वपूर्ण बात किसान मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरक्षित खेती में हम बेमौसम की फसलों को भी उगा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कोई भी अगेती फसल उगाते हैं तो उसका दाम बाजार में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं संरक्षित खेती के द्वारा। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि संरक्षित खेती से हमारे किसान मित्र विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन नवीनतम तकनीकों को अपनाने से पर्यावरण की तुलना में फलों, फूलों और सब्जियों की उत्पादकता को 4 से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इन तकनीकों के तहत अच्छी उत्पादकता के साथ साथ फसलों की बेहतर गुणवत्ता भी प्राप्त होती है। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक आय प्राप्त करने के लिए हमारे जो ग्रामीण युवा हैं, इन तकनीकों को अपना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आखिर में आपके मन में ये बात आ रही होगी कि संरक्षित खेती करने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, जितने भी उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी वो हम कहाँ से लें, कितना पैसा खर्च होगा उसमें। तो इन सब बातों की जानकारी आप ले सकते हैं आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि केंद्र में। आपके जिला कृषि अधिकारी हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संरक्षित खेती करने के लिए जो भी संरचना बनाते हैं और उसमें जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, सरकार आपको अनुदान भी देती है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना संरक्षित खेती के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, जब हमारे गांव का विकास होता है तो हमारे देश का विकास होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि हमारे किसान भाइयों की अच्छी आमदनी होगी तो हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान शुरू किया था। किसान मित्रों, आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं में विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया ये अभियान केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। ये अभियान 14 अप्रैल 2016 को समाज सुधारक डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की स्मृति में शुरू किया गया था, जिन्होंने पंचायती राज के विकास और वंचित वर्ग के समान अधिकारों के लिए प्रयास किया था। इसे ग्राम स्वशासन अभियान के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। किसान मित्रों, इस अभियान का मूल उद्देश्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की दृष्टि से प्रेरित होकर गांव में सामाजिक सद्भावना को बढ़ाना, फसल बीमा योजना और मृदा कार्ड के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देना, ग्राम सभा की बैठकों का प्रबंधन करना ताकि क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए पैसे का सही उपयोग हो सके। इसके अलावा अगर हम इस अभियान के लाभों के बारे में बात करें तो इससे कृषि उत्पादकता और खेती के तरीकों में सुधार होगा, गांव के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और हमारे जो युवा हैं उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ सके। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार है ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हीर रांझे का, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप हीर रांझे के किस्से से रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। Sharda School of Media, Film and Entertainment, Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 88511-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: आज जहां नजर घुमाओ वहीं मन चले दिख जाएंगे। घर से लेकर कॉलेज और ऑफिस तक, ऐसे में माँ बाप के द्वारा बढ़ती सख्ती लड़कियों के दिल में और डर डाल देती है। ऐसे वो आगे नहीं बढ़ पाती, मनचले बहके कदमों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हमें बचकर रहना होगा, हमारी एक लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। खासकर किशोरी उम्र में अगर देखा जाए तो ये उम्र नई चीजों को समझने और सीखने की होती है, पर हम ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इस उम्र में ही कदम सबसे ज़्यादा बहकते हैं। और जब बात इंटरनेट की आती है तो लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में जो अच्छा लगता है वही सही लगता है। कई बार लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। चैटिंग ऐप्स से लेकर डेटिंग ऐप्स तक मनचले अपनी नज़र रखे रहते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि इंटरनेट विकास के उपयोग के लिए है, ना कि जाल बिछाने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल इंडिया अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, क्योंकि देश में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में भारी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया है कि 2019 में साइबर अपराधों में 4,45,046 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में ये 28,02,048 था। ये सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। और किशोर उम्र में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया होता है। इंटरनेट में ऐसे नए अनजान लोगों को दोस्त बनाना, उनसे अपनी पर्सनल डिटेल साझा करना, ऐसी नादानियां होना आम बात है। हर जगह सोशल मीडिया में अपनी अपडेट्स डालना, इन्हीं सब चीज़ों की तलाश होती है मनचलों को। इसीलिए हमें बच्चों को इंटरनेट के दोनों पहलू समझाना चाहिए। अगर हम अपनी नज़र घुमाएं तो हमारे आसपास ही ऐसे मनचले दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में किशोरों को हर अच्छी लगने वाली चीज सही लगती है, तो उन्हें हर चीज के दोनों पहलू समझना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले कम से कम सोचेंगे। उनको समझना बेशक आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनको कम से कम पता होगा कि वो किस राह में चल रहे हैं। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिश्तेदारों ने छेड़खानी की या प्यार था उनका, किससे ये बात साझा करें। वैसे तो माँ बाप को ऐसी समझ बनानी चाहिए अपने और अपने बच्चों के बीच कि बच्चे उनको अपना दोस्त मान लें। कुछ भी सलाह या मन की बात करनी हो तो उनसे ही वो सबसे पहले करें। भारत में 86% यौन उत्पीड़न परिवार के सदस्यों जैसे भाई और चाचा, साथी पड़ोसी, नियोक्ता, सहकार्यकर्ता और दोस्तों द्वारा किया जाता है। 14,102 यानी 38% बलात्कार पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष से कम थी। ऐसे में आपका अपने बच्चों के साथ कैसी समझ होनी चाहिए, आइए इस कविता द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, क्योंकि हम नहीं अनजान हैं। पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे पीछे खड़े हैं हम। बता दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे हमदर्द हैं हम। डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं, डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं। समझने वाला ये वक्त है आया, मुझे तू अपना दोस्त बना ले मेरे बच्चे। देख तेरे लिए मैं फ्रेंडशिप बैंड भी लाया। इस कविता के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक माता पिता को किस प्रकार से अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो बच्चे अपने माता पिता से हर एक बात साझा करें। अब चलिए सुनते हैं कुछ बहके कदमों की कहानियाँ। निखिल जो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, चलिए उनकी जिंदगी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं।
5: अरे यार राज, सड़क पर आज कोई फूल झड़े नजर नहीं आ रही।
4: हाँ यार निखिल, आज तो कोई दिखे नहीं रहा।
5: यार एक बात बता, क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं कि सड़क के लेफ्ट में जो लड़की जाएगी वो मेरी और राइट में जो जाएगी वो तेरी।
4: चल ठीक है, पर अगर कोई लड़की गुस्सा करेगी तो?
5: अरे यार ये लड़कियाँ हमारे लिए है ना, और हमारी नहीं होंगी तो किसकी होंगी।
4: चल ठीक है, बस इतना हंसने की कोशिश मत कर, इतना बता दे लड़कियाँ कहाँ दिख रही हैं यार।
5: देख देख देख देख देख, आई तो सही।
4: अरे हाँ वो रही।
5: अरे अंधे, अरे देख तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट वाली रोड में नहीं, राइट वाली में।
4: यार निखिल देख, उसे तू कुछ मत कहियो।
5: क्यों?
4: क्योंकि वो मेरी बहन है यार।
5: यार राज देख, डील तो पहले ही तय हो गई है। तूने ये कहा था कि जो राइट साइड से लड़की आएगी वो मेरी होगी।
4: पर यार निखिल वो मेरी बहन है।
5: देख मुझे कुछ नहीं पता, तूने तो पहले ही शर्त लगाया था, और अगर तेरी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मैं खुशी खुशी हाँ कर देता।
4: हाँ हाँ ठीक है जैसी तेरी इच्छा। आगे क्या हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी बड़े मनचले हो सकते हैं? चलिए आइए इस दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं।
6: अरे भाई अमित, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है यार?
4: और नहीं तो क्या करूं यार, उस सोनिया ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठुकराया ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मना भी कर दिया यार।
6: अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे मना कर दे?
4: और नहीं तो क्या, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा यार, सबके सामने बीच सड़क पर।
6: क्या? और तू अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठा है अपनी इंसल्ट करवा के?
4: मैं तेरी जगह होता तो अभी तक उसे सबक सिखा चुका होता। यार मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे किस तरह से करूं और क्या करूं ऐसा कि जिंदगी भर याद रखे। मनचले किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार अनजान ही हो, कई बार रिश्तेदार और टीचर्स भी हो सकते हैं, और यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ किशोरी उम्र के ही मनचले होते हैं। कई बार देखा गया है बड़े बूढ़े भी ऐसी तुच्छ हरकतें करते पाए गए हैं। ऐसे में परवरिश का एक बड़ा रोल है। समाज में पल रहे पनप रहे इस सोच को खत्म करने के लिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर।
7: नमस्कार, मैं हूं साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। और आपने दो ऐसे नाटक सुना जो ऑडियो नाटक था, जिसमें आपने खास तौर से मंचलों की बातें सुनी और किस प्रकार से वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से वो लड़कियों के लिए अपने प्लान बनाते हैं और फिर उनको उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ अक्सर देखने को मिल जाती है हमारे आस पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में। और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के समय में महिला के साथ लूट, छीना छपटी, छेड़छाड़, अपहरण, रेप आदि घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। महिलाएं सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, महिला हो या हाउसवाइफ हो, हर जगह उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा बना ही रहता है। इसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और मार्केट में या ट्रेन में या ऑटो में या लिफ्ट में, गली मोहल्ले में मनचले या बदमाश लड़के को का जो छेड़छाड़ करना है वो जारी है। उन पर अश्लील कमेंट करना, अश्लील इशारे करना आदि रोजाना की लगभग आम बात सी हो गई है। बहुत सी लड़कियां रोज रोज इन बदतमीजियों से तंग आकर या तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं या फिर डर कर कुछ कह नहीं पाती हैं, जिससे ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता है, हौसला बुलंद होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में फोन के माध्यम से अंजना जी हैं, जो कि रूम टू रीड की प्रोग्राम एसोसिएट है। मैम बहुत बहुत स्वागत है।
8: थैंक यू सर।
7: हम आपको बता दें कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप सड़क पर हो, रास्ते पर हो, पैदल चल रही हो, तो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, हेडफोन इस्तेमाल करते समय किस प्रकार से समझदारी बरतें, आने जाने वाले रास्ते का चुनाव किस प्रकार से करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में किसी अभी के साथ अकेली हो तो क्या करें, और जब आप अकेले या रात में टैक्सी या ऑटो का सफर कर रहे हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा करे तो क्या करें। तो इसका क्या इलाज है समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खोट है।
8: ये बहुत एक देखिए बहुत सामान्य सी बातें कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मन चले तो लोग, अगर आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे सोच के स्तर पर। तो हम क्या कह रहे हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तो परिवार में देखें, घर में देखें, तो वो जो आप लड़कियों को तंग करते हैं उनको आपके पुरुषत्व से जोड़ा गया। अरे लड़के तो ऐसे ही होता है। अगर किसी लड़की को छेड़ दिया और लड़की ने को अगर उसने परेशान कर दिया तो उसकी कॉलर दूसरे लड़कों के बीच में भी खड़ी हो जाती है। तो एक तो इसका जो है हम कैसे इसका स्पेसिंग हो जाता है, मन चले शब्द का जो जितना एक कहना चाहिए ग्रीवियस या फिर जिस तरीके से इसका प्रभाव है, हम उस तरीके से इसको देखते नहीं है। तो हम सामाजिक तौर पे मान के चलते हैं कि लड़के तो मनचले होते ही हैं और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम लड़की हो तो तुम्हें ही सब कुछ की जिम्मेदारी तुम पे है। तो अगर तुम्हें लड़का छेड़ रहा है तो तुम्हें ही कोई कमी होगी। लड़का अगर तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर वो कुछ भी बोले जा रहा है, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों नहीं हो, तो गलती लड़की की होगी। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि इस चीज को समझने के लिए, मतलब हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इस शब्द को इतने हल्के से ना लें। अगर आपका लड़का है तो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि कितनी बार क्या होता है ना कि वो लड़के भी अनजाने में करते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि इसका प्रभाव जिसको आप छेड़ रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है
7: जी।
8: और आप उसको अपने जो क्षणिक खुशी होती है या पुरुषत्व होता है उससे जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम इस परिस्थिति में कि लड़के ही लड़की को छेड़ते हैं, या लड़कियां भी कभी कभी ऐसा आता है कि जगह होती है जहां पे लड़कियों का वर्चस्व होता है, तो देखा गया कभी कभी ऐसे होते हैं कि लड़कियों ने छेड़ दिया, विच इज वेरी रेयर बट लोग बोलते हैं। तो हमें इस कल्चर को समझना चाहिए और इस पे उनका सेंसिटाइज करना चाहिए।
7: बिल्कुल, आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ये कहा कि जो हमारे अंदर ये मेंटेलिटी हमारे समाज की बन गई है कि अक्सर लड़की ही गलत होती है और लड़की को सबमिसिव होना चाहिए।
8: तो तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा इसलिए लड़के छेड़ रहे हैं।
7: हाँ, तुम्हारे कपड़े छोटे थे इसलिए छेड़ रहे थे।
8: तुम जींस पहनोगे तो होगा ही यही तुम्हारे साथ। तो खास करके ये जो एडोलेसेंट एज है, किशोरावस्था में इस तरह की पाबंदियां जो है वो लड़कियों पे बढ़ती जा रही है और इसी तरीके का फ्रीडम जो है लड़कियों को मिलता चला जाता है। रूम टू रीड अगर मैं संस्था की बात करूं तो हम लोग लाइफ स्किल पे काम करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ स्किल कितना महत्वपूर्ण है एक एडोलेसेंट उम्र के लड़के और लड़कियों को समझने की, कि आपको उस चीज के लिए आपको जागरूक करता है, आपको सेंसिटाइज करता है और आपको ये देखने का मौका देता है कि आपकी हरकत दूसरी जो आपका काउंटर पार्ट है जिसको आपने छेड़ा उनके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, उनको सामाजिक पाबंदी किस तरीके से लगाई गई और परिवार के अंदर में भी किस तरीके से रोक टोक शुरू हो गई। ये तो एक है। दूसरी तरफ देखिए जो मनचला लड़का है उसको देखिए उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। आप छेड़ने लगे आप उस छेड़ने के विशेष साइकिल में जा रहे हैं तो आपका सेंसिटाइजेशन लो हो रहा है, तो आपके सामने वाला जिसको आप छेड़ रहे हैं या जो दुखी हुआ उससे आपको क्या हो रहा है प्लेजर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव प्लेजर लेने लग गए। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लगना चाहिए वो आप डाइवर्ट हो गया और डिस्ट्रक्टिव माहौल में चला गया, एनर्जी की तरफ चला गया, तो कहीं ना कहीं उस उम्र में अगर आपका पढ़ाई आपकी अलग जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो पीछे रह जा रही है और आप इस तरह की हरकतों में बढ़ते चले जा रहे हैं जिस वक्त में माता पिता बिल्कुल एहसास तक नहीं करते हैं।
7: सही
8: और
7: है।
8: जब उनको पता चलता है तो पता चलता है कि लड़का जो है या लड़की जो है वो तो जितनी वो सोचती थी समस्या उससे कहीं ज्यादा हो गई है जितनी नहीं होनी चाहिए थी, और तब उनको लगता है कि मैंने तो तुम्हें सारी सुविधाएं दी, मैं तुमको रोकी नहीं, मैं तुमको कहीं जाने से रोकी, मैंने पढ़ने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई और फिर भी जो है तुमने ऐसा किया। ये लड़का ने नहीं किया या लड़की पे जो आपने पाबंदी लगाया इन लड़की ने नहीं किया, ये पेरेंट्स के नेग्लिजेंस ने किया या पेरेंट्स के लैक ऑफ अवेयरनेस ने किया। तो इस परिस्थिति में तीनों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, माता पिता का भी होना बहुत जरूरी है और लड़का व लड़की उनका भी अवेयरनेस उनका भी सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है, तभी ये मनचले शब्द को भी हम जो है बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे।
7: जाहिर सी बात है और हमने तो मनचले शब्द को समझ ही लिया है और साथ में हमने ये भी कॉन्सेप्ट जान लिया कि जो ये अवधारणा है हमारे और हमारे आसपास रहने वाले समाज में जो पेरेंट्स हैं उनको बदलनी होगी और अपने बेटों को सीख देनी होगी। अब हम ये बात करेंगे कि अगर इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारा समाज इतना डेवलप नहीं है, तो लड़कियां किस प्रकार से अपना प्रिकॉशन ले सकती हैं जब आप सड़क पे चलें, रास्ते में चलें, पैदल चल रही हो तो क्या करें?
8: जी पहले तो जब वहां पे आते हैं ना तो सबसे पहले एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत होगी, लड़की अगर रास्ते में आप चल रही है और आपका कोई पीछा कर रहा है तो इसमें एक बात जो हमें मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि इसमें दो तरीके की परिस्थिति होती है। पहले तो जो आपको छेड़ रहा है या रास्ते में आपके पीछे जा रहा है तो आप पहले उसको श्योर हो जाइए कि सही में जो बंदा है वो छेड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है लड़की थोड़ा घबरा जाती है, एक्सपोजर का अभाव है या वो एक घर में डांट पड़ेगी लड़का तुमको छेड़ता है, तो अगर नहीं भी छेड़ता है वो जस्ट इमेजिन करती है क्योंकि इसमें ना मीडिया क्या भी बड़ा रोल है। आप फिल्मों में देखिए सीरियल में देखिए तो छेड़ने वाले लड़के का ना एक अलग टाइप दिखा दिया जाता है
7: जी।
8: तो अब अगर उस तरीके के लड़के या उस ड्रेसअप में लड़के आपको रोड पे दिखते हैं तो आप तुरंत सोचते हैं ये लड़का चेंगड़ा टाइप का होगा, मनचला है और ये छेड़ देगा मुझे, तो घबराहट में भी आप गलतियां कर जाती।
7: Exactly. तो सबसे सही सही सही बात हाँ।
8: तो सबसे जरूरी है इस जगह पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आप रोड पे चल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो जहां जा रही हैं जिस कपड़े में हैं जिस तरीके से चल रही हैं वो आपका निर्णय है और आप इसलिए उस पर कपड़े में हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कम नहीं आके कि शायद मैंने आज जींस पहन लिया है, छोटा टॉप पहन लिया है, क्रॉप टॉप है तो शायद मुझे लड़का इसलिए छेड़ रहा है और घर जाऊंगी तो मम्मी भी डांटेगी, तो घर से भी छुपा के मैंने पहना है और ये तो आपका निर्णय है, आपने जो पहना है वो या आप जिस जगह पे चल के जा रही हैं वो उस जगह के लिए आप खुद निर्णय लें कि वो जगह सही है, आप जो कर रही हैं वो सही है और आप उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये एक बात है। दूसरी बात है आप ऑब्जर्व करें थोड़े देर, मान लीजिए आप चल रही हैं और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है तो थोड़ा सा तेजी से चलने लगी, क्या वो बंदा भी तेजी से चलने लगा? रास्ते मुड़ जाइए, लेफ्ट हो जाइए, अगर आप फ्रंट जा रही हैं, और अगर कोई बिजी वाला जगह, भीड़ भाड़ वाला जगह लेफ्ट में है या राइट में है तो आप उधर मुड़ जाइए। और देखिए वो सामने वाला बंदा भी जा रहा है, अगर वो सही में आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आपके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है तो सबसे पहले यू स्टॉप, आप वहां पे रुकिए क्योंकि आप भीड़ वाले जगह पे पहुंच गई हैं। अगर शांत जगह में है उस जगह पे जाने की कोशिश करिए जहाँ भीड़ भाड़ है,
9: जहाँ पे लोगों का चहल पहल है।
8: लोगों का चहल पहल है, किसी दुकान पे रुक जाइए जैसे ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उस जगह पे सबसे पहले आप वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे आ रहा है तो आपको वो सपोर्ट मिल जा सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। कोई महिलाएं अगर मिल जा रही हैं, अगर आप पुरुष के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो किसी फीमेल का भी आप सपोर्ट ले सकती हैं। किसी तो ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उस जगह पे जाइए। दूसरी बात है कि अगर वो सही में आप पे कमेंट पास कर रहा है या आपका पीछा कर, तो कॉन्फिडेंटली उसको फेस कीजिए। और जहाँ हाँ आप वहाँ पे कहिए कि आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो गलत है, और उसको आप फेस कीजिए। वो चीज है, आप जितना भागेंगी, आप जितना छुपेंगी, आप जितना डरेंगी तो आपको उतना ज्यादा तंग किया जाएगा और वो आपके पीछे उतना दौड़ेगा।
9: मुझे तो लगता है कि हेडफोन हाँ, का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के उस वक्त करना चाहिए चलते समय।
8: हाँ, हाँ, हाँ।
9: तो अभी तो हमने ये बात कर लिया कि आप सड़क या रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम लिफ्ट में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से समझदारी बरतनी है।
8: तो पहले तो पीछे वाले सिस्टम से ही आते हैं जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वहां पे आ गए कि पब्लिक प्लेस में आ गए, वहां से आप हेडफोन का अगर इस्तेमाल करें तो क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो रहे हैं, आपको दुनिया का कोई एहसास नहीं, अपना मोबाइल में लगे हुए दोस्तों से बात करते हुए चले जा रहे हैं, तो आपके आसपास का आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बेहोशी जो है वो आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सेम वो हेडफोन अगर आप लिफ्ट में इस्तेमाल कर रही हैं, आप कहीं भी कर रही हैं, तो आप सबसे पहले अवेयर हों। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, पर पब्लिक पे जब आप चल रही हैं या बाहर हैं तो कोशिश करें कि हम इम्पोर्टेंट कॉल को ही लें और हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। उसका सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता कि कोई आपको छेड़ रहा है, आप लिफ्ट में अकेली हैं तो आपको आपको दिखेगा नहीं कि कोई आपको गलत नजर से देगा, और आप अपनी दुनिया में व्यस्त है तो आपको नहीं पता, जब तक पता चलता है आपके लिए लेट हो जाता है या बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो एक तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात है अगर आप लिफ्ट में हैं तो आपके लिफ्ट में मिरर होता है, तो आप 360 डिग्री जो है आप देख सकती हैं कि कौन है जो मेरे तरफ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ही देखा है। लिफ्ट में अलार्म बटन होता है तो आप उसको प्रेस कर सकती हैं, और आप ताकि जो गार्ड रूम होगा, कंट्रोल रूम होगा, वहां लोगों को पता चल जाएगा क्या परेशानी। तीसरी बात है जिस फ्लोर पे आप है तो अमूमन 10 सेकंड लगता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, अगर हाइट सर्टेन हाइट होता है तो एक मिनट का मामला है, आप इमीडिएट जो अपकमिंग फ्लोर है उस पे उतर जाइए, वहां से उतर करके आप स्टेयर से नीचे की तरफ आइए जो गार्ड रूम का जगह है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाएंगे हो सकता है वही आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हो, तो वहां पे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए, और उस जगह पे पब्लिक प्लेस में आकर के मतलब वहां पे अपनी चुप्पी को तोड़िए और वहां पे बोलिए कि आपको मदद की जरूरत है, हेल्प। ये जो होता है ना स्टॉप रन एंड हेल्प,
9: यस
8: हाँ, ये आपको करना चाहिए, एंड दैट इज विथ योर कॉन्फिडेंस। अगेन मैं कहती हूँ कि हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, और उसको हम समझते हुए आप अपने एक्शन को लें, घबराए नहीं बिल्कुल।
9: सही बात है। और जब हम अगर ऑटो में सवारी कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं तो या टैक्सी हो तो उस वक्त किस तरह से प्रिकॉशन लेना है।
8: जी बिल्कुल, ऑटो हो या टैक्सी हो, ये कि अमूमन प्रैक्टिस रखना चाहिए कि कितने नंबर का ऑटो से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है ना, जब हमारे साथ कोई समस्या होती है, कोई हमें छेड़ देता है, और तब अगर हम पुलिस स्टेशन में या 100 नंबर पे कॉल करके या हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है कि ऑटो का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है। ड्राइवर के पास ना एक नंबर होता है, उनका नाम के साथ नेम प्लेट होता है, तो आप हमेशा इस चीज को ले, या टैक्सी में भी जाए, कहीं भी जा रहे हैं तो टैक्सी का नंबर, ड्राइवर का नाम और उनके आईडी कार्ड को जरूर देखें।
9: अच्छा, ताकि अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कह रही थी आप।
8: हाँ, ताकि आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लूलेस नहीं है। आप अगर ट्रैवल करें आप अपना फोन नंबर या लोकेशन किसी और से भी शेयर कर लें फ्रेंड से।
9: बिल्कुल जाहिर सी बात है ये तो है ही। अब हम बात ये कर रहे थे कि जैसे सुरक्षा की चीजें अपने पास रखने की हो या फिर पार्टी के दौरान सतर्क रहने की चीज हो या होटल में किस प्रकार से चुनाव करें, कहीं जैसे बस से जा रहे हैं दूर का रास्ता है और बस खराब हो गई बीच में होटल लेना है तो किस प्रकार से हम उसका चुनाव करें, इन चीजों का कैसे ध्यान रखें हम, या पार्टी के दौरान सतर्क रहने वाली बात हो।
8: बिल्कुल एक तो देखिए सेफ्टी किट होता है तो आप अपना सेल्फ सेफ्टी किट जरूर अपने साथ रखें। बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है हमेशा निगेटिव है बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी निगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर हमारे लाइफ में आती है तो बहुत सिंपल सी चीज है चाबी का की होता है ना किसी चीज की चाबी है वो आपके पास होनी चाहिए अगर उस तरीके है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि चिली स्प्रे होता है उस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं तो ऐसे करके छोटी छोटी सेफ्टी की होती है जैसे पेन है पॉइंटेड है पेंसिल है जो आपके पर्स में होता है होना चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल बहुत कठिन परिस्थिति में कर सकते हैं सेफ्टी की के लिए। पर उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना होगा आपका पर्स है पर्स में अगर साइड में कोई ऐसा हार्ड मेटल को लटका के रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है और आप उसको अगर सिर्फ सेफ्टी भी है तो अगर उस मेटल से चोट लगता है तो सामने वाला एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएगा और आपके पास स्पेस मिल जाता है कि आप वहां से भाग सकती।
9: बिल्कुल
8: तो ये है रहा जब हम ट्रेवल करते हैं और होटल का चुनाव करना है या कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्स को देखना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं है ना तो आप अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है और सुनो शारदा पे आप जो भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं तो साइबर सेफ्टी को देख रहे होंगे तो उसके लिए सुना होगा तो उन सब चीजों में हम हमेशा बताते हैं कि अगर साइबर में भी साइबर अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को सर्फ कर रहे हैं तो वहां पे देखें कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है गूगल की तरफ से क्या है वो इन्फॉर्मेशन क्या है तो वहां से एक होटल का डिटेल लें उस सिटी का और अकॉर्डिंगली आप वहां पे संपर्क भी करें और सेम डिटेल आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट को भी शेयर कर सकती हैं कि आप उस जगह पे हैं और यहाँ तक हैं और आपके जरूरत पे आपकी मदद की जा सके। पर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अगेन कि आप ये ना बार बार शेयर करें कि मैं अकेली हूँ
9: अच्छा
8: मुझे अच्छा रूम दो क्योंकि मैं अकेले ठहरने वाली हूँ या मैं शहर में अकेली हूँ।
9: ओके
8: नो यू आर हियर बट यू आर मतलब आपके साथ और भी सारे लोग हैं आप उस कॉन्फिडेंस के साथ रहें या फिर कभी हेल्प भी लेना है तो कोई तंग कर रहा है और उसी होटल का सामने वाला बंदा कोई दिख रहा है तो उतने ही फ्रेंडली तरीके से बात करें कॉन्फिडेंस से बात करें कि हो सकता है वो बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है।
9: बिल्कुल बिल्कुल
8: वो एकदम से वो अकेलापन का अनुभव लेकर के अकेले ना जाए
9: ये भी हानिकारक हो सकता है।
8: जी बिल्कुल।
9: चलिए तो अब हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। एक छोटी सी बात ये भी करनी थी कि लास्ट में आप थोड़ा सा एक तो मैसेज जो दे दीजिए कि आज इस प्रोग्राम के तहत क्या मैसेज हमारे सुनो शारदा के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देना चाहती हैं और साथ ही साथ अगर इस राज्य की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें तो उनके लिए हम किस प्रकार से पुलिस से सहायता ले सकते हैं।
8: जी बिल्कुल बिल्कुल साकिब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमने बात की वो सेल्फ की बात करी सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट। उसके बाद थोड़ा सा हमने रखा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या रखा होटल कैसे ले पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए गाड़ी का नंबर रखना चाहिए और इस तरीके की चीजें हमने बात तो अभी हमने दो सेगमेंट को बहुत रखा कि अगर कहीं भी है तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए सोशल अवेयरनेस। अब जो तीसरी चीज है वो है सिस्टम की अवेयरनेस मतलब सरकारी तंत्र है हमारी किसी भी परिस्थिति में हमारी हमारा मदद करने के लिए राइट। तो जैसे 100 नंबर होता है आपको इमीडिएट कुछ लगता है आप 100 नंबर पे कॉल कर सकती हैं। वुमन हेल्पलाइन नंबर होता है कि 181 जैसे सुनो शारदा है यूपी दिल्ली इस जगह पे हमारे लिसनर सुन रहे हैं तो उस जगह पे 1090 पे हम कॉल कर सकते हैं जो महिला हेल्पलाइन है और वहां पे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप लोकेशन दे सकती हैं आप कह सकती हैं मैं फलाने ऑटो में हूँ एक नंबर भी आप दे सकती हैं वो ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन और ऑटो नंबर जस्ट बोल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि द मोमेंट आप फोन पे बात करेंगी हेल्पलाइन पे बात करेंगे जो आपका परपरेटर्स है मतलब जो तंग करने वाला व्यक्ति है चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई मनचला हो, वो तुरंत सतर्क हो जाएगा कि ये लड़की पुलिस को कॉल कर दी है। तो या तो वो अपने इंटेंशन को चेंज कर लेगा या आपके पास इतना समय मिल जाएगा कि आप उसको कह सकती हैं कि रुको और मैं आप एक्शन ले सकती हैं। तो स्टॉप एंड एक्शन के लिए आपके पास समय मिल जाता है, राइट। एक जो बहुत नंबर है जो महिलाओं को हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमन है, ये नंबर है जैसे 2694745 है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमन के लिए 2337059। तो ये सारे जो नंबर हैं उनको आप अपने पास रखिए ताकि विषम परिस्थिति में जहां पे आप बिल्कुल 100 नंबर को 181 को 1090 को एक्सेस नहीं कर पा रही, ऐसा जो बहुत रेयर है, तो और आपके साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है, इन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और समय बहुत कम हो पा रहा है, तो आप पेरेंट्स जो है बिल्कुल कमीशन में शिकायत दर्ज करने से पीछे ना हटे। आप ये ना सोचे कि चलो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी बेटी के बारे में बोल दूंगी तो मेरी बेटी की बदनामी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप इस कमीशन में अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आपने अपनी बेटी की तो कर ही दी, आप दूसरी की बेटियों को भी कहते हैं आप इसी परिस्थिति में जाओ। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मंचलों का जो हरकत हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं,
7: सिर्फ
8: इस सोच के साथ कि हम अपनी बेटी तुम नहीं संभालोगे तो हम दूसरे के बेटा को क्या संभालेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, हम मदर्स बोलती है, हम अपनी बेटी को ना कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे के बेटे को कैसे करेंगे।
7: सही बात है,
8: क्यों नहीं करेंगे, हमारी बेटी भी है और दूसरे का बेटा भी किसी का बेटा है, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटा बिगड़े या बेटी बिगड़े। उस सोच को पे चोट करने की जरूरत है।
7: सही बात है, तो ये था मैसेज
8: जी। उसके साथ मैं मैसेज पे आऊंगी, रूम टू रीड का रेडियो एपिसोड चलता रहता है, तो अगला एपिसोड हम लोगों का बुली पे भी आएगा, बुलिंग पे और कैसे बदले, गर्ल्स को बुली की समझ कैसे होनी चाहिए, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए। और अगर उससे रिलेटेड कोई सा भी सवाल होता है तो सुनो शारदा के फोन पे हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिए और हम लोग आपके पास आंसर के साथ आएंगे।
7: बहुत बड़ी जानकारी,
8: यस,
7: बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन पे जोड़ने के लिए और बहुत सारी बातें की आपने। आशा करता हूँ कि आपकी दी गई जानकारी से हमारे श्रोता जो है वो लाभ उठाएंगे। आज हमने खासतौर से बात की जब आप सड़क या रास्ते पर पैदल चल रही हो तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते वक्त क्या करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में हो तो क्या करें, जब आप अकेले रात में टैक्सी या ऑटो ले रही हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा कर रहा हो तो क्या करें, अलग अलग राज्यों में उनके अपने फोन नंबर्स हैं, उनको आप अपने पास रखें और सुरक्षा कीजिए अपने पास रखें, घबराई ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पार्टी के दौरान सतर्क रहें, होटल में टिकने पर सावधानी बरतें। तो ये हमारे साथ आज साझा कर रही थी अंजना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
8: Thank you very much.
7: तो श्रोताओं जाते जाते हमारे वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप हमसे जुड़ते हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो हमारा वो दो माध्यम है, एक तो फोन के जरिए से, दूसरा इंटरनेट के जरिए से। तो हमारा फोन नंबर है 01204060205 मींस 01204060205 और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। ईमेल एड्रेस एक बार फिर से सुनिए 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए सुनो शारदा पर अपने अगले प्रोग्राम के लिए। नमस्कार,
10: सुनो शारदा।
11: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश, अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
12: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.com।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
3: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
2: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं अनुज, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑन 12th June 2026 इन ऑनलाइन मोड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओनली 250 rupees। फॉर मोर अपडेट कॉल 8851 02300 और 9785014998 smfe.conference@sharda.ac.in। Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम हंसते खेलते बच्चे।
1: तनु छुट्टियों में माँ के साथ अपने नाना जी के पास आई हुई है। तनु के आने से उसके नाना जी तो एकदम छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए रोगियों को देखते हैं। तनु उनके साथ रोज सैर करने जाती है। आज भी वे सुबह सुबह सैर कर रहे हैं।
2: हाँ हाँ, कैसी बढ़िया हवा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है इस हवा में।
3: नाना जी, नाना जी, वहाँ पर जरा देखिए तो।
2: कहाँ, किधर, क्या देख रहा बेटा?
3: अरे उधर सामने।
2: आजकल तो जैसे मैं तनु की आंखों से ही देखने लगा हूँ।
3: वहाँ दीवार पर कुछ लिखा है।
2: तनु, जरा पढ़कर तो देखो क्या लिखा।
3: नाना जी, इस पर तो हंसते खेलते बच्चे का कितना सुंदर चित्र बना है।
2: अरे बेटा, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है।
3: और लिखा है, बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए उन्हें समय पर टीके लगवाएं।
2: ठीक।
3: पोलियो, तपेदिक, खसरा जैसे रोगों से बचाएं।
2: बिल्कुल ठीक बेटा। और बेटा तनु, तुम तो समझदार हो, समझ गई होगी कि ये बैनर किस लिए लगाया गया है।
3: जी हाँ नाना जी, हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को इन घातक रोगों से बचाने वाले टीके अवश्य लगवाएं। और और आज की कहानी क्यों ना आप इन रोगों से बचाने वाले टीकों के बारे में सुनाएं?
2: ठीक है, पर पहले घर के अंदर तो चलो।
3: जी चलिए।
1: दोनों घर के अंदर जाते हैं। तब नाना जी कहते हैं,
2: हाँ तो तनु
3: जी,
2: आज मैं तुम्हें इन रोगों से बचाने वाले टीकों के आविष्कार की कहानी सुनाऊंगा।
3: सबसे पहले चेचक से बचाने वाले टीके का आविष्कार हुआ था।
2: और ये अच्छा काम किसने किया था?
3: इस आविष्कार को करने वाले थे एडवर्ड जेनर।
2: शाबाश तनु, शाबाश, एकदम सही जवाब। घातक रोग चेचक से बचाने वाले टीके या वैक्सीन का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था।
3: अरे नाना जी, ये तो मुझे पता ही है।
2: पर ये पता तुम्हें? वो इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे, लेकिन इससे भी पहले भारत और चीन में इस रोग से बचाव के एक तरीके के बारे में लोग जानते थे।
3: अच्छा, वो कौन सा तरीका था नाना जी?
2: बेटे, चेचक का भयानक रोग बहुत पुराने समय से मनुष्य को आतंकित करता आया था। लेकिन अब चेचक से बचाव करने वाली वैक्सीन के आविष्कार ने इसे जड़ से समाप्त कर दिया। एक विशेष बात ने लोगों का ध्यान खींचा था।
3: वो क्या नाना जी?
2: वो ये बेटा कि यदि एक बार किसी को चेचक का रोग हो जाता था और उसके प्राण बच जाते थे, तो फिर भविष्य में उसे फिर कभी चेचक नहीं होता था।
3: अच्छा,
2: वो रोग के प्रभाव से बचा रहता था।
3: यानी उसके अंदर चेचक से लड़ने की प्रतिरोधी शक्ति आ जाती थी।
2: हाँ बेटे, भारत और चीन के कई चिकित्सकों का ध्यान भी इस महत्वपूर्ण बात की ओर गया।
3: अच्छा।
2: और बेटे, इसी के आधार पर उन्होंने चेचक से बचाव का तरीका खोज निकाला।
3: वो क्या तरीका था नाना जी?
2: चेचक होने पर रोगी के शरीर में दाने उभर आते थे।
3: अच्छा।
2: हाँ, इनमें एक प्रकार का द्रव भरा होता था।
3: जी।
2: जिन लोगों पर चेचक का हल्का प्रभाव होता, चिकित्सक उनके शरीर के दानों से द्रव निकाल लेते।
3: अच्छा।
2: और फिर उसे सुखाकर सुई द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा में पहुंचा दिया जाता था।
3: है?
2: हाँ बेटा, और इससे उस मनुष्य को चेचक तो होती लेकिन वो अपना भयानक रूप धारण नहीं करती थी।
3: अच्छा।
2: हाँ, तो बेटे समय के साथ चेचक से बचाव का ये उपाय एशिया के कई देशों में प्रचलित हो गया।
3: अच्छा।
2: और पता है
3: क्या,
2: सन 1718 में तुर्की में इंग्लैंड के राजदूत की पत्नी अपने देश इंग्लैंड जब तुर्की से वापस गई तो उन्होंने वहां इस एशियाई तरीके के बारे में बताया।
3: अच्छा।
2: और बेटा इस प्रकार ये जानकारी एशिया से बाहर कई देशों में पहुंच गई।
3: यानी चेचक से बचाव का उपाय ढूंढ लिया गया?
2: ना, ऐसा भी नहीं था बेटा।
3: तो फिर
2: कभी कभी इस तरीके से चेचक घातक रूप ले लेती थी।
3: अच्छा।
2: हाँ, और रोगी की हालत बिगड़ जाती थी। तो बेटा आगे चलकर डॉक्टर जेनर ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया।
3: जी।
2: डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय उन्होंने चेचक के बारे में जानकारी ली।
3: अच्छा।
2: और बेटे साथ ही चेचक से मिलते जुलते गौशीतला यानी काउपॉक्स के बारे में भी उन्हें पता चला।
3: गौशीतला यानी काउपॉक्स, ये क्या होता है नाना जी?
2: बेटा गौशीतला एक ऐसा रोग है जो गाय के थनों को प्रभावित करता है।
3: अच्छा।
2: इस रोग से पीड़ित गाय का दूध निकालते समय ग्वाले इसके चंगुल में आ सकते हैं।
3: जी।
2: डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एडवर्ड जेनर ने गांव में ही एक दवाखाना खोल लिया।
3: अच्छा।
2: तब गौशीतला के रोगी ग्वाले उनके पास इलाज के लिए आने लगे। और बेटा डॉक्टर जेनर ने पाया कि गौशीतला यानी काउपॉक्स और चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के बीच एक गहरा संबंध है।
3: जी।
2: जिसे गौशीतला रोग हो जाता था उसे फिर चेचक नहीं होती थी।
3: ओ।
2: इस संबंध में अपने अनुभव डॉक्टर जेनर एक डायरी में नोट करते रहे।
3: बहुत खूब।
2: हाँ बेटा, और उन्होंने देखा जिसे गौशीतला हो जाती थी उसे अगर चेचक बचाव द्रव का इंजेक्शन दिया जाता तब भी उस पर कोई बुरा असर नहीं होता था।
3: इसके बाद उन्होंने क्या किया नाना जी?
2: और बेटे इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया।
3: अच्छा।
2: गौशीतला के दानों से द्रव निकाल कर उन्होंने 8 साल के एक बालक जेम्स फिब्स की बाह में इंजेक्ट कर दिया।
3: ओ।
2: और बेटे इस प्रयोग के लिए उन्होंने बच्चे के माँ बाप से पहले ही अनुमति ले ली थी।
3: इसके बाद जेम्स फिब्स का क्या हुआ नाना जी?
2: फिर बेटे जेम्स को गौशीतला रोग हो गया।
3: ओ।
2: लेकिन वो जल्दी स्वस्थ भी हो गया।
3: अरे वाह।
2: इससे उनका विश्वास बढ़ा और अब डॉक्टर जेनर ने उस पर अपना अगला प्रयोग किया।
3: वो कैसा प्रयोग था नाना जी?
2: बेटे इस बार उन्होंने चेचक के रोगी के दानों से निकला द्रव जेम्स की बाह में इंजेक्शन से पहुंचा दिया।
3: फिर क्या हुआ?
2: बेटे इससे जेम्स को चेचक का प्राण लेवा रोग भी हो सकता था।
3: अच्छा।
2: लेकिन आश्चर्य उसे कुछ न हुआ।
3: अरे वाह।
2: और उसके लगभग 1 महीने बाद उन्होंने फिप्स पर फिर अपना प्रयोग दोहराया। और बेटा इस बार भी वो एकदम स्वस्थ रहा।
3: अरे वाह। लेकिन नाना जी डॉक्टर जेनर के मन में जेम्स फिप्स को लेकर चिंता तो अवश्य रही होगी।
2: बेटा बात ठीक है तुम्हारी, पर डॉक्टर जेनर को अपने प्रयोग की सफलता पर पूरा विश्वास था।
3: अच्छा।
2: और वो सफल हो भी गए थे।
3: तो इस तरह डॉक्टर जेनर ने चेचक से बचाव करने वाले टीके का आविष्कार कर ही लिया।
2: नहीं नहीं नहीं बेटा, ना एकदम ऐसा नहीं हुआ।
3: तो फिर
1: नाना जी ने तनु को बताया कि डॉक्टर जेनर ने अपने प्रयोग की सफलता का पूरा विवरण प्रकाशित करवाया तो सब चकित रह गए। अनेक ने उनकी प्रशंसा की तो कई ने उनका विरोध भी किया। नए प्रयोगों के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है।
3: लेकिन बाद में तो लोगों को डॉक्टर जेनर के महान आविष्कार का महत्व मानना ही पड़ा।
2: वो तो मानना ही था बेटा। और बेटे, इस तरह आविष्कार हुआ चेचक से बचाव करने वाले टीके का।
3: अच्छा,
2: समझ गई ना?
3: जी।
2: और डॉक्टर जेनर ने इसे वैक्सीन नाम दिया।
3: अच्छा, वैक्सीन?
2: हाँ बेटा, और इसका कारण भी रोचक था।
3: अरे भला इसमें रोचकता की क्या बात थी?
2: सुनो तो सही बेटा, सुनो। लैटिन भाषा का एक शब्द है वैका, उसका अर्थ है गाय। गौ शीतला के दानों के द्रव से बने होने के कारण ही इस प्रकार के टीके को ये नाम मिला।
3: ठीक है, लेकिन नाना जी, हमारे घर के बाहर लगी बैनर पर तो कई बीमारियों के नाम लिखे हैं, उनके लिए टीकों का आविष्कार कब हुआ?
2: देखो बेटा, 18वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
3: वो कौन थे नाना जी?
2: बेटे वो थे फ्रांस के रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर तथा जर्मनी के डॉक्टर रॉबर्ट कॉक।
3: अच्छा।
2: डॉक्टर कॉक ने प्रयोगों से पता लगाया कि कुछ घातक रोग कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होते हैं।
3: जी।
2: बेटी तनु,
3: जी,
2: इस खोज के लिए डॉक्टर रॉबर्ट कॉक को उनके साथी पॉल इनरिक और उनके छात्र एमिल फॉन बेरिंग के साथ 1909 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
3: और उसके बाद क्या हुआ?
2: और उसके बाद बेटा 1955 में जोन साक ने एक अलग तरीके की खाने वाली वैक्सीन का आविष्कार किया।
3: अच्छा, वही खाने वाली पोलियो की बूंदे?
2: हाँ बेटा, पोलियो की बीमारी की रोकथाम में विश्व भर से इसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। और बेटे ऐसे ही सफल प्रयासों से BCG वैक्सीन तपेदिक के लिए बनी।
3: अच्छा।
2: और अब तो एक साथ 3-3 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन से काम चल जाता है।
3: अच्छा।
2: हाँ बेटा।
3: वो कौन सी वैक्सीन है नाना जी?
2: देखो बेटा, DPT वैक्सीन डिप्थीरिया यानी गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस, 3 बीमारियों के लिए है।
3: जी।
2: और बेटे इसी प्रकार MMR वैक्सीन मिजल्स यानी खसरा, मम्स और रूबेला, 3 बीमारियों से बचाने के लिए है।
3: जी।
2: अब तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए भी वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं बेटे।
3: अच्छा।
2: अरे क्या बात है बेटे, ये बात सुनकर तुम जैसे किसी गहरे सोच में डूब गई हो।
3: नाना जी।
2: हाँ?
3: मैं सोच रही थी क्या मैं भी आपकी तरह एक दिन डॉक्टर बन सकूंगी।
2: बन सकूंगी? तनु, तुम तो अपने नाना से भी बड़ी डॉक्टर बनोगी, बड़ी अच्छी। देख लेना बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है।
3: सच नाना जी?
2: एकदम।
1: हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है।
0: हंसते खेलते बच्चे, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जैमिनी कुमार, सतीश कक्कड़, नीतू झांजी और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: वैसे तनु, हाथ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
1: जी,
0: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
1: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
0: ये कैसी अजीब बात है?
1: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
0: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
1: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
0: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
1: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
0: अच्छा?
1: हाँ और क्या, तू सुनाइए ना। जल्दी सुनाइए।
0: हाँ बेटा सुनाता हूँ।
1: जल्दी सुनाइए।
0: अरे सोचने तो दो।
1: जल्दी सोचिए।
0: मैं किसकी कहानी सुनाऊँ देखो।
1: अरे जीवन काका।
0: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
2: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
0: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
2: जी
0: यहाँ लेट जाओ।
2: जी
0: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
1: जी।
0: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
1: जी अभी लाई।
0: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
2: जी
0: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
2: जी
0: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
2: जी जी जी, जी।
0: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
1: जी जी नाना जी।
0: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
0: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी। तो नाना जी ने तनु से पूछा,
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है? कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा। इसीलिए तो चिकित्सकों के मन में सही सही बुखार बताने वाले किसी उपकरण के निर्माण की बात आई थी।
2: ओ, दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था?
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए। चलिए ना।
1: अच्छा तो चलो।

0: ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
1: जी।
0: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी।
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, अनेक डॉक्टर उसका उपयोग भी करने लगे। पर फिर भी
1: जी
0: उससे रोगी के सही तापमान का अनुमान लगाना मुश्किल था
1: जी,
0: इसलिए उसमें आगे विकास और सुधार होते रहे।
1: अच्छा।

0: आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी
0: समझ गई ना।
1: जी
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
1: जी
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा
0: हाँ बेटा। और बाद में अल्कोहल का स्थान पारे या मरकरी ने ले लिया।
1: जी
0: और फिर शरीर का तापमान कितना है इसे जानने का पैमाना भी विकसित कर लिया गया बेटा।
1: वो किसने किया?
0: वो बेटा जर्मनी में
1: जी
0: प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हुए हैं, ग्रेब्रियल डेनियल फॉरेनहाइट। क्या? ग्रेब्रियल
1: डेनियल
0: फॉरेनहाइट। हाँ बेटा उन्हीं के नाम पर इसे फॉरेनहाइट स्केल नाम दिया गया।
1: लेकिन आजकल तो तापमान का सेल्सियस पैमाना काम में लाया जाता है।
0: हाँ बेटा इसका श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेल्सियस को जाता है बेटा।
1: अच्छा
0: हाँ उन्होंने इसका विकास सन 1742 में किया था।
1: जी
0: और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा

0: वैसे बेटा
1: जी,
0: बुखार अपने आप में बीमारी नहीं, उसका लक्षण है।
1: जी,
0: बुखार भी कई तरह के होते हैं बेटा, उनसे संकेत मिलता है कि शरीर में कोई रोग है।
1: अच्छा।
0: थर्मामीटर से रोगी के शरीर का सही तापमान जानकर डॉक्टर आगे जांच करके इलाज शुरू करते हैं।

0: नाना जी आजकल तो बाजार में नए से नए आधुनिक थर्मामीटर आए हैं।
1: हाँ बेटा आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
0: जी
1: ये अधिक सुरक्षित होते हैं बेटे।
0: जी
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
0: जी
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
0: जी
1: बोलकर बतला देता है।
0: नाना जी
1: हा?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा
1: हाँ इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा नाना किसका हूँ।

0: तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है।
1: वह बारिश का दिन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जयमिनी कुमार, सतीश कक्कड़, नीतू झांझी और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
2: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
1: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार और वेलकम है आप सबका, स्वागत है मेरे तीसरे एपिसोड में जिसका नाम मैंने रखा है फूल फुलवारी और हरियाली। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा यानी ग्रैनो का नाम आते ही सबसे पहले हर किसी ने कहा हरियाली। तो हरियाली इंडेक्स यहाँ पे एक ऐसा है, और जब बात हो क्लाइमेट एक्शन की और SDG गोल 13 की, तो ये पेड़ पौधे और हरियाली बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये तो आधार है ना, ये बेस है। पेड़ रहेंगे तो जमीन मजबूत रहेगी, पेड़ रहेंगे तो पानी का लेवल सही रहेगा, पेड़ रहेंगे तो पक्षी जीव जंतु हम सब खुश रहेंगे। दोस्तों अब बारी है बातचीत करने की मनीष कुमार वर्मा सर से, तो चलिए सुनते हैं इस स्मार्ट सस्टेनेबल सिटी में हमारे इन टॉपिक्स पे सर का क्या कहना है।
1: एनवायरनमेंट के लिए, ग्रीनरी के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
2: देखिए, एक बहुत बड़ा ग्रीन कवर हमारे यहाँ पे, वो नोएडा में भी आप देख सकती है और ग्रेटर नोएडा में भी है। ये हमारे प्लानिंग का एक एसेंशियल पार्ट होता है कि क्योंकि ओवर द टाइम पॉपुलेशन बढ़नी है, एक्टिविटीज बढ़नी है, और इससे पर्यावरण भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो जब भी इस तरह के प्लानिंग होती है तो उसमें एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हर बिल्डिंग या जो भी इंस्टीट्यूशन है या ऐसा है उसके सामने ग्रीन एरिया पूरा वेल डिफाइंड है। उसको ग्रीन एरिया को डेवलप करना ही होता है। इंडस्ट्रीज को भी जो हम लोग प्लॉट्स वगैरह देते हैं किस कंडीशन के साथ देते हैं कि वो भी ग्रीन एरिया डेवलप करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, एनवायरमेंट को बचाने में अपना योगदान देंगे। तो काफी काफी ग्रीन कवर है, और इसीलिए अगर आप एरियल सर्वे करें हमारे ग्रेट नोएडा का या नोएडा का, तो यू विल फाइंड मेनी ग्रीन पैचेज एंड इट्स अ वेरी ग्रीन सिटी एंड वेरी गुड इन एनवायरमेंटल टर्म्स।
1: एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एंड अग्रीड, क्योंकि मैंने अपने इस रेडियो सीरीज में जितने लोगों से एक सवाल पूछा कि पहला चीज ग्रेटर नोएडा के नाम पे आपके मन में क्या आता है, तो मोस्टली 80% लोगों ने हरियाली कही।
0: यही समझाना है मुझे, और शायद इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आखिर कितनी सच्चाई है इस लाइन में, आज जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस थर्ड एपिसोड में। मैं होशिखा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। ग्रेटर नोएडा के स्मार्ट सिटी मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, और इस यात्रा पे आप सबको अपने साथ लेके चलती हूँ। तो भाई, एक अदद आशिया खोज रही हूँ, घर बसाने की तमन्ना रख रही हूँ, और इस खोज में पहुंच गई हूँ ग्रेटर नोएडा। एक रीकैप आप सबको मैंने बता दिया। ग्रेटर नोएडा कैसा शहर है, क्या क्या यहाँ की खासियत है, और क्लाइमेट एक्शन पे आखिर इस प्लांट सिटी में क्या क्या है, क्या सोचा गया है? तो अभी तक हमने एक ग्रेटर नोएडा का इतिहास समझा, ओवरऑल समझा, यहाँ के लोगों से बातचीत की, और एपिसोड 2 में मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मैंने पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया से बात की, जिन्होंने तालाबों के बारे में बताया कि ग्रेटर नोएडा में किस तरह से तालाब बचाए जा रहे हैं सूखने से, और किस तरह से वो जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। इसके अलावा बहुत लोगों से पानी की जांच पड़ताल की मैंने, लेकिन अब मैं जाऊंगी हरियाली की ओर। दोस्तों, ग्रेनो सिटी में हरियाली के ऊपर खास तवज्जो दी गई है। खुली चौड़ी सड़कें, सड़कों के दोनों ओर अगर आप देखेंगे बहुत सारे पेड़, और मुझे सबसे अच्छा पेड़ लगता है नीम, जामुन, गुलमोहर, ये पेड़ जो है हमेशा हरे भरे रहते हैं। चौड़े चौराहे जिनमें कई किस्म के फूल पौधे लगाए गए हैं, फुलवारी लगाई गई है, और तो और सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट जरूर रखी गई है। जी हाँ, आप अक्सर देखेंगे हर सोसाइटी के पास में एक ग्रीन जोन बनाया गया है, ग्रीन बेल्ट है, जहाँ खूब पेड़ ही पेड़ है, जिससे कि जो एयर है वो भी प्योरीफाई हो सके, आपको स्वच्छ हवा मिल सके, और जो तालमेल है ना बैलेंस्ड इकोसिस्टम का, वो बना रह सके। एंड ये बहुत जरूरी है ताकि पर्यावरण और तरक्की का जो तराजू है वो मेंटेन रह सके। इसका परफेक्ट उदाहरण ये ग्रेनो सिटी है। दोस्तों, पेड़ पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव है, वो कभी बुढ़ापे से नहीं मरते। कैलिफोर्निया के पास सबसे पुराने जीवित पेड़ों का रिकॉर्ड किया गया है, रखा गया है, और राज्य के कुछ ब्रिसल कोन पाइन्स और विशाल पेड़ 4,000-5,000 साल पुराने। कैन यू इमेजिन? मैथ्यू सेल अनुमानित 4,000 साल पुराना प्राचीन पेड़ ब्रिसल कोन पाइन दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक है। वृक्षों के छल्ले जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी तक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पेड़ के जो छल्ले हैं ना, सिर्फ उसकी उम्र नहीं बताते, बल्कि वे ज्वालामुखी विस्फोट या सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं का भी होने का संकेत देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अच्छे विकास के वर्षों में जहाँ संसाधनों की अच्छी आपूर्ति होती है, छल्ला मोटा होता है। जहाँ पारिस्थितिक तंत्र में संसाधन कम होते हैं, ये पतला हो जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के सोमारू राम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है, और दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस तरह से हमारे तापमान में बदलाव आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, एकदम से कहते ना वेदर शिफ्ट हो रहा है, मौसम बदल रहा है तेजी से, उसका पूरा एक तरह से एक प्रिंट हमारे इन पेड़ों के ऊपर भी देखा जा रहा है, और ये सब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हो रहा है। रणनीति रूप से पेड़ और झाड़ियाँ लगाने से आप अपने ऊर्जा बिलों पर 25% तक बचा सकते हैं। एक छायादार पेड़ गर्मियों में आपके घर को 20 डिग्री तक ठंडा करने में मदद कर सकता है। वे न केवल गर्मियों में छाया प्रदान करते हैं, बल्कि सर्दियों में हवा को रोकने का भी काम करते हैं। यही नहीं, रिसर्च बताते हैं कि पेड़ों के आसपास रहना हमारे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इनफैक्ट हांगकांग विश्वविद्यालय ने एक स्टडी में ये पाया कि जंगल जितना घना हो, तनाव उतना ही कम होगा, जो बताता है कि पेड़ों से सजी सड़क पर टहलना आपको मेंटली हेल्दी रखता है और फायदेमंद होता है। शोध ये भी बताते हैं कि प्रकृति के अनुभव से हमें दूसरों के प्रति दयालु महसूस करने की एक भावना जागती है, और मदद करने की एक भावना हम अपने बच्चों में विकसित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ फाइटोनसाइड नाम का एक रसायन छोड़ते हैं। जब हम सांस के साथ अंदर लेते हैं तो रक्तचाप को कम कर सकता है, चिंता के स्तर को भी कम कर सकता है, ओवरऑल मेंटली आपको हेल्दी रख सकता है। और आपको पता है कि स्वस्थ मन एक स्वस्थ तन का बेस होता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि एक परिपक्व पेड़ यानी एक हरा भरा बड़ा पेड़ 48 पाउंड से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है, कार्बन को हटाकर उसे जमा कर सकता है और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ सकता है। और तो और, जैसे जैसे बारिश धरती पर गिरती है, पेड़ों द्वारा इसे धीमा और फिल्टर किया जाता है, जिससे यह मिट्टी में सोखने में मदद मिलती है। पेड़ तब प्राकृतिक स्पंज के रूप में काम करते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा कर फिल्टर करते हैं और इसे धीरे धीरे धाराओं और नदियों में छोड़ते हैं। और तो और, मिट्टी को जल मार्गों में कटाव होने से भी रोकते हैं, तूफानी पानी के बहाव को कम करते हैं और बाढ़ से होने वाले नुकसान को भी रोकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे दोस्त पेड़ के बारे में। ग्रेटर नोएडा की पहचान NCR की सबसे हरे भरे शहर के रूप में होती है। सभी प्रमुख रास्तों के किनारे बने ग्रीन बेल्ट इस शहर की हरियाली और खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई कदम उठाए हैं। मुख्य कार्यपाल अधिकारी नरेंद्र भूषण जी के निर्देशन पर प्राधिकरण ने पार्कों में ओपन जिम, ग्रीन बेल्ट के पौधे के नाम पर सड़कों का नाम, सड़कों के किनारे कच्ची जगह पर घास, ग्रीन बेल्ट की नंबरिंग, कंपोजिट टेंडर जैसे कई कदम बढ़ाए हैं। सरकार द्वारा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान चलाकर लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जहां एक ओर इतनी जद्दोजहद की जा रही है हरियाली बचाई जाने के लिए, वहां गर्मी में तापमान 50 से 55 डिग्री तक जा रहा है। हर घर के हर कमरे में एक एयर कंडीशन लगा हुआ है और पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। क्या आपने सोचा है इस भीषण गर्मी में ये एयर कंडीशन कितनी ज्यादा गर्म हवा और वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ऑलरेडी सडनली एक तापमान में गिरावट पता चलती है। मान लीजिए आप सड़क पे हैं और वहाँ पे 50 डिग्री अगर गर्मी है और एकदम से आप बगल में लगे पेड़ के एक झुंड में खड़े हो जाएं, वहाँ पे एकदम से आपको महसूस होगी ठंडक और टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक कम भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है बंधु कि जैसे आने वाले पीढ़ी के लिए आप प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये पेड़ पौधे भी हैं जो जीवन देंगे, और जीवन है तब तो कल है। एक आर्टिकल पढ़ के मुझे सच में बड़ा दुख हुआ, जहां हरे भरे पेड़ काट डाले गए। ग्रेटर नोएडा सेक्टर α1 और सेक्टर α2 के मकान मालिकों द्वारा घर के सामने लगे हरे भरे बड़े पेड़ काट दिए गए। आज आज हम सब बात कर रहे हैं पेड़ बचाने की। दोस्तों, लोगों को लगता है कि घर के आगे पेड़ है तो पूरी तरह से घर दिखाई नहीं देता, या फिर छिप जा रहा है, या फिर पत्ते गिरते हैं, गंदगी होती है। लेकिन हमें ये समझना है कि यही असल धरोहर है। अखबार में पढ़ते हुए एक नाम मैंने पढ़ा, वो है विक्रांत तोंगड़, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेटर नोएडा में हरियाली पे काम कर रहे हैं। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि एक भी पेड़ कटने न पाए और लोगों को प्रेरित करते हैं कि हर संभव हो सके ग्रीन बेल्ट, पेड़, पौधे, पार्क, आसपास कॉलोनीज में जितना हो सके लगाए जाएं। तो विक्रांत जी का नाम सुनते ही मैं तो भाई तैयार हो गई, झोला उठा लिया और पहुंच गई उनसे बातचीत करने अपने सवालों के साथ में। तो चलिए, हरियाली और पर्यावरण का क्या स्टेटस है ग्रेटर नोएडा में, उनसे और करीब से जानते हैं। विक्रांत तोंगड़ सर, आज मैं इतना खुश हूँ आपसे मिलकर के, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं हरियाली को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, और जो मानव जीवन है ना, उसको एक नया आयाम दे रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है ग्रेटर नोएडा को लेकर के। मैं बहुत लोगों से इस चीज पे बात कर चुकी हूँ कि स्मार्ट सिटी प्लांट सिटी, क्या ये सच में है?
3: हाँ, प्लांट सिटी है। बाकी देश के बाकी शहरों से कंपेयर करें हम तो उनके लिहाज से ये एक प्लांट वे में सिटी बनाया गया है। ग्रीन फील्ड सिटी है, जो एक पूरी आबादी मतलब गाँव की जमीनें एक्वायर करके, आप ग्रीन लैंड को एक्वायर करके, फार्म लैंड को एक्वायर करके, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पूरा एक शहर बसाया जा रहा है। तो ये इस तरह से काफी ग्रीनरी काफी है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो हम ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, और यमुना में और ज्यादा ग्रीनरी का प्लान है, और नोएडा में भी ग्रीनरी बेहतर है भारत के कुछ शहरों से कंपेयर करें, पर फिर भी और बेहतर प्लान बनाया जा सकता है और स्मार्ट किया जा सकता है इन शहरों को।
0: सर, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरा मेरा जो सवाल है, आप अक्सर पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं और पानी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपने क्या कोई ऐसा कदम उठाया या कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व की जिससे आपको लगता है कि जो एयर पॉल्यूशन है या हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए हम कुछ कर सके, या आपने कोई ऐसा कदम उठाया है वो हमसे साझा करें?
3: हम लोगों ने स्टबल बर्निंग को लेकर भी किया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में भी यूपी में, पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्सों की तरह काफी स्टबल बर्निंग होती थी, खासकर एक्सप्रेसवे के किनारे, परिचौक के आसपास जो है कुछ फार्म लैंड्स में ये होता था। तो वो इशू भी हमने उठाया 2010-11 में ही, अलग अलग फोरम पर उठाया। पहले जो गवर्नमेंट एजेंसीज है जो एनवायरनमेंट में डील करती हैं उनको अप्रोच किया, फिर एनजीटी गई और एनजीटी ने फिर इस पर 2015 में बैन भी लगाया स्टेबल बर्निंग यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी, जिसका इम्पैक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी पड़ा। यहाँ पर जो बर्निंग हो रही है वो लोग भी फिर इसको लेके अवेयर हुए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर लगाम लगाई, जिसकी वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई सारे इंसिडेंट्स इस तरह के पकड़े गए जिसमें बर्निंग हो रही थी। फिर उन पर फाइन भी लगाया गया, उन पर रोक भी लगाई गई, उन्हें एजुकेट भी किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी। ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसानों के साथ संगोष्ठी, बैठकें की गई, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एयर पॉल्यूशन का खास सीजन में जो होता है पराली की वजह से उसमें काफ़ी गिरावट आई, उसमें रोक लग पाई, एक ये था। इसके अलावा सूरजपुर वेटलैंड को लेके था, उसमें जिस तरह से अनमाइंडफुल तरीके से ट्री कटिंग करके और इको टूरिज्म के नाम पर उसमें कंक्रीटाइजेशन और ये सब किया जा रहा था, उसे पिकनिक पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा था जो कि एक नेचुरल हैबिटेट है, उसमें भी हम लोगों को सफलता मिली कि उसमें बैन लगा इस तरह की एक्टिविटीज़ का ट्री कटिंग को लेके, और अनऑथराइज तरीके से अंदर पार्किंग बनाई जा रही थी उस पर भी लगाम लगी, रोक लगी। तो इससे वो एक नेचुरल तरीके से अब डेवलप हो रहा है वेटलैंड, सूरजपुर वेटलैंड, ग्रेटर नोएडा।
0: तो दोस्तों, ये तो थी विक्रांत तोंगड़ जी से बातचीत, जो कि बहुत दिलचस्प थी। और ऐसे पैशनेट लोग सच में अगर आगे आ जाएं तो कहानी बदल जाए। विक्रांत जी इतनी जबरदस्त काम कर रहे हैं और मुझे लगता है हम सबको उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, हम सबको उनके साथ हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत है, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है दोस्तों, हम सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज खास बातचीत फूल फुलवारी और हरियाली।

0: को लेकर के। आशा करती हूँ एपिसोड 3 आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है कि दोस्तों, एक बात जो हमें समझना होगा कि क्या वाकई इतना काफी है, क्योंकि चौड़ी सड़क तो अच्छी लगती है लेकिन सड़क किनारे कूड़े का ढेर जैसे मुंह चढ़ाता है। और तो और, पेड़ पौधे की तो बात हो गई, जीव जंतुओं का क्या स्टेटस है वो भी तो पता करेंगे। यानी अभी मेरे बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब हम मिल के खोजेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे जीव जंतु और जीवन का क्या स्टेटस है ग्रेटर नोएडा में। और इसके लिए जुड़े रहिए शिखा के साथ क्लाइमेट एक्शन के इस स्पेशल एपिसोड में। यूं ही जुड़े रहिए मेरे सफर में, मेरे हम सफर बन के। स्टे ट्यून टू सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रेनो SDG 13 क्लाइमेट एक्शन पर आधारित एक श्रृंखला रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM पर। यह एपिसोड यूनेस्को और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल यूनेस्को SDG फेलोशिप के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: रहे हैं मनोज? काय मुलट काय बैठा हो, का बात होगी?
1: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसे कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
0: तो का हुआ, मिलो ना? तो
1: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
0: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी को नाम कुछ और गेर दिया
1: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
0: तो का बात है
1: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
0: ए तो यार, इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
1: तो अभी वो ठीक ना होवे?
0: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरो टीको लगवा लिया हो और प्रमाण पत्र में न लिखो गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट को विवरण न लिखो गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कोई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, यो सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यो बस एक ही बार ठीक हो गए।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकु करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाई ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वही नंबर डालो और 6 अंकन को एक ODP आवे, वही वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाई ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम चुटकी बजा से। या के अलावा, अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: Sharda School of Media, Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupee. For more update, call 88511-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878-93-7770. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878-93-7770। Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुना शारदा 90.8 FM Sharda School of Media, Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा

महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं, एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
1: महावारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की महावारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
0: महावारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी महावारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
1: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही महावारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। महावारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना, प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।

0: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
6: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
5: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना आपको पड़ता है।
6: तो भुगतो।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM. Sharda School of Media, Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 88511-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
1: केवल माँ का दूध
2: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
1: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
2: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
4: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
6: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
8: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: mixing in the house.
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.